शामी गजलें। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं, शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहां भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा बाबर रेडियो। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, जिन्हें आप इस संसार में लाए और जिनके कर्मों से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में। उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है। किंतु सुख और सुरक्षा, क्या ये मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते?

माता पिता के दिए हुए अच्छे या बुरे संस्कार, उनकी दी हुई योग्य अथवा अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं? संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र। अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं, कैसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। वस्तुतः जो माता पिता अपनी संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। स्वयं विचार कीजिए,

0: कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मय देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जैनी हवा में आपड़े हाल रह हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो भी अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था।
3: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है

0: साथियों, अनंत यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका अंत दिखाई न दे। और अगर हम इस विचार को अपने जीवन से जोड़े तो एक बहुत खूबसूरत सवाल सामने आता है कि क्या हमारी सोच भी अनंत हो सकती है।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, इन्हीं बातों के साथ आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
1: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
0: लेकर हाजिर श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है अनंत चतुर्दशी और अनंत बनने की कोशिश। क्या हमारी सोच भी अनंत हो सकती है? साथियों, जैसे कि जब हम अनंत चतुर्दशी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में गणपति बप्पा की विदाई, पूजा पाठ, उत्सव, भक्ति और विसर्जन की तस्वीर उभरती है।
1: बिल्कुल,
0: कई दिनों तक हमारे बीच रहने के बाद बप्पा को विदाई दी जाती है। लेकिन क्या श्रोता साथियों, आपने कभी सोचा है कि इस विदाई के पीछे छिपा संदेश सिर्फ धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है?
1: बिल्कुल,
0: अनंत चतुर्दशी हमें अनंत शब्दों पर सोचने का भी अवसर देता है। अनंत यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका अंत दिखाई न दे। और अगर हम इसी विचार को अपने जीवन से जोड़े तो एक बहुत खूबसूरत सवाल सामने आता है कि क्या हमारी सोच भी अनंत हो सकती है?
1: बिल्कुल,
0: क्या हम अपनी सोच को अपनी परिस्थितियों, असफलताओं, डर, लोगों की राय और छोटी से छोटी सीमाओं तक सीमित रखने के बजाय उसे बड़ा कर सकते हैं? तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी सवाल पर बात करने वाले हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन शुरुआत में जैसे कि गीत संगीत हमारे दोस्तों को हम सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना शुरुआत पहले एक प्यारे से गीत के साथ ही हम करें।
0: जी हाँ, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारा आपके साथ बातचीत का जुड़ चुका है। हम बात कर रहे हैं अनंत चतुर्दशी और अनंत बनने की कोशिश को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: और जानेंगे कि क्या हमारी सोच भी अनंत हो सकती है। जागृति जी, हम देखते हैं कि अनंत का अर्थ सिर्फ अंतहीन नहीं बल्कि असीम संभावनाएं भी होती हैं।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि दोस्तों, अनंत शब्द सुनते ही हमारे मन में कुछ ऐसा आता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जीवन में अनंत होने का मतलब ये भी नहीं है कि इंसान हर चीज में सबसे आगे निकल जाए।
1: जी हाँ।
0: या उसके पास सब कुछ हो। जागृति जी, अनंत सोच का मतलब होता है सीखने की कोई सीमा न रखना। जैसे कि एक युवा कहता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, लेकिन अनंत सोच कहती है कि मैं अभी इतना कर पा रहा हूँ लेकिन मैं और भी सीख सकता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: एक युवा कहेगा कि मुझसे एक बार गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ। लेकिन उसकी अनंत सोच उससे कहती है, गलती हुई है लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
1: बिल्कुल।
0: वही युवा कहता है कि मेरे पास साधन कम है, लेकिन उसके अंदर की अनंत सोच उससे कहती है, साधन कम हो सकते हैं लेकिन रास्ते खोजे जा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, यही सोच किसी व्यक्ति की दिशा को बदल सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि अक्सर हमारे सामने सबसे बड़ी बाधा कोई परिस्थिति नहीं होती बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। श्रोता साथियों, जैसे कि कहना चाहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास मौका नहीं है, लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गया तो, मेरे जैसे छोटे शहर या गांव से आने वाले लोग कितने आगे जा सकते हैं, और धीरे धीरे ये बातें हमारी सोच की दीवार बन जाती है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन जरा सोचिए श्रोताओं कि अगर हर इंसान अपनी पहली असफलता के बाद रुक जाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को पहली बार किसी विषय में अंक कम मिले और वो मान ले कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, तो क्या वो कभी बेहतर कर पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: अगर कोई युवा पहली नौकरी के लिए प्रयास करे और असफल हो जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके लिए भी रास्ते बंद हो जाए। बिल्कुल नहीं। एक रास्ते का बंद होना पूरी यात्रा का अंत नहीं हो सकता।
0: जी हाँ जागृति जी, ऐसे में अनंत सोच का पहला कदम है श्रोता साथियों, मैं सीख सकता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि आज के युवाओं के लिए सबसे जरूरी बातों में से एक है लर्निंग माइंडसेट, जैसे कि सीखते रहने की मानसिकता।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि मैं आज से थोड़ा और क्या सीख सकता हूँ। नई भाषा सीखना हो, कोई कौशल सीखना हो साथियों, खेती की कोई नई तकनीक समझनी हो, कंप्यूटर सीखना हो, रेडियो प्रोडक्शन सीखना हो, कैमरा चलाना हो, या किसी परीक्षा की तैयारी करनी हो।
1: जी हाँ।
0: या फिर अपने व्यवहार को बेहतर ही क्यों न बनाना हो। हर जगह सीखने की संभावनाएं मौजूद है। ज्ञान की दुनिया इतनी बड़ी है जागृति जी कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ सीख लिया।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए युवा जीवन में सबसे सुंदर आदत हो सकती है और वो ये है कि हर दिन खुद से ये कहना कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला।
1: बिल्कुल कशिश, और हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, अनंत सोच और सपने, यानी कि सपने भी हमारी सोच का हिस्सा है, लेकिन कई बार हम अपने सपनों को परिस्थितियों के हिसाब से छोटा कर देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम सोचते हैं कि ये सपना मेरे लिए बहुत बड़ा है, मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है, मैं छोटे शहर से हूँ, मेरे पास ज्यादा संसाधन नहीं है, मेरे आसपास कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। लेकिन सपना देखने के लिए हमेशा बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती है। एक छोटे से गांव का युवा भी सपना देख सकता है, एक साधारण परिवार का विद्यार्थी भी नई ऊंचाइयों के बारे में सोच सकता है।
0: बिल्कुल।
1: एक लड़की अपने लिए नए अवसरों की कल्पना कर सकती है, एक किसान का बेटा कृषि के साथ तकनीक जोड़ने का सपना भी देख सकता है। सपनों की शुरुआत अक्सर संसाधनों से नहीं, सोच से होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से हमारी बातें श्रोता साथियों से चली रही हैं अनंत चतुर्दशी के महत्व और अनंत बनने की कोशिश को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें हम आगे भी जारी रखेंगे युवा साथियों से, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, अनंत चतुर्दशी और अनंत बनने की कोशिश, क्या हमारी सोच भी अनंत हो सकती है को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम कहना चाहेंगे कि अनंत सोच का मतलब हर चीज में हाँ कहना नहीं है। साथियों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अनंत सोच का अर्थ ये नहीं कि हम बिना सोचे हर काम को करने लगे।
1: बिल्कुल।
0: अनंत सोच का मतलब है कि बिना सीमा के भागना नहीं, बल्कि अपनी संभावनाओं को सीमित करके न बैठ जाना है। हमें अपनी वास्तविक परिस्थितियों को समझना होगा, योजना बनानी होगी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा।
1: बिल्कुल।
0: उदाहरण के लिए आपको बता सकते हैं कि अगर कोई युवा डॉक्टर बनना चाहता है तो सिर्फ सपना देखना पर्याप्त नहीं है, उसे पढ़ाई करनी होगी, सही मार्गदर्शन लेना होगा, समय देना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी।
1: जी हाँ।
0: यानी कि कह सकते हैं कि बड़ी सोच, सही दिशा, लगातार प्रयास, तभी वास्तविक प्रगति संभव है।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही बात करें तो युवाओं के जीवन में असफलता एक ऐसा शब्द है जिससे कई लोग डरते हैं। जैसे कि परीक्षा में कम अंक आ गए तो असफलता मिली, इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ तो उसे असफलता मान लिया जाता है, किसी प्रतियोगिता में हार गए या किसी काम में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला। ऐसे में श्रोता साथियों, हमारा मन कहता है कि बस अब नहीं होगा, लेकिन आपकी अनंत सोच आपसे कहेगी कि एक परिणाम आपके पूरे भविष्य को तय नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल।
1: असफलता हमें ये बता सकती है कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत होती है। अगर परीक्षा में कम अंक आए तो ये देखने का अवसर है साथियों की तैयारी में कमी कहाँ रह गई। अगर इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ तो ये समझा जा सकता है कि अगली बार किस कौशल को बेहतर करना है।
0: बिल्कुल।
1: अगर किसी योजना में सफलता नहीं मिली साथियों, तो उससे अनुभव लिया जा सकता है। इसलिए असफलता को अंतिम दरवाजा समझने के बजाय एक सीखने वाला पड़ाव समझना जरूरी होता है।
0: जी हाँ कशिश, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि दूसरों की सोच हमारी सीमा क्यों बने।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि साथियों, युवाओं के सामने एक और बड़ी चुनौती होती है कि लोग क्या कहेंगे। हम कई बार अपना निर्णय इसलिए बदल देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि दूसरे क्या सोचेंगे।
1: बिल्कुल।
0: अगर मैं ये करूंगा तो लोग हंसेंगे, अगर मैं नया काम शुरू करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन याद रखिए श्रोताओं कि लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन हमारा जीवन हमारे साथ रहता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए सलाह सुनना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सोच और निर्णय को समझना भी जरूरी है। युवाओं को दूसरों की बातों से सीखना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान केवल दूसरों की राय से तय नहीं करनी चाहिए।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि दोस्तों हमारी सोच पर डिजिटल दुनिया का बहुत बड़ा प्रभाव है।
0: बिल्कुल।
1: हम सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों तस्वीरें, वीडियो और विचार देखते रहते हैं। कभी किसी की सफलता देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, तो किसी की उपलब्धि देखकर हमारे युवा साथी सोचते हैं जागृति जी कि उनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा। किसी का नया करियर देखकर हमें अपना रास्ता गलत लगने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ऐसे में हमें याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया किसी की पूरी जिंदगी नहीं दिखाता, सिर्फ उसका चुना हुआ हिस्सा ही दिखाता है। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी दूसरे की दिखाई हुई यात्रा से करना श्रोता साथियों सही बात नहीं है। अनंत सोच का मतलब ये भी है कि हम अपनी यात्रा को समझें। जैसे कि मेरा रास्ता अलग हो सकता है, मेरी गति अलग हो सकती है, लेकिन मेरी संभावनाएं खत्म नहीं हुई है।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को कहेंगे कि अनंत सोच और रचनात्मकता के बारे में, यानी कि जिस युवा की सोच खुली होती है वो समस्याओं में भी अवसर खोज सकता है। जहाँ कोई कहता है कि यह काम मुश्किल है, वहीं दूसरा युवा पूछ सकता है कि इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: जहाँ कोई कहता है कि यहाँ रोजगार नहीं है, वहीं कोई दूसरा सोच सकता है कि यहाँ कौन सी स्थानीय जरूरत है जिससे रोजगार का अवसर बनाया जा सके। यही रचनात्मक सोच समाज को आगे ले जाती है। गांव में स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प, कृषि, पर्यटन, डिजिटल सेवाएं, छोटे व्यवसाय और कौशल आधारित काम, इन सब के नए अवसर तलाशे जा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए जरूरी है श्रोताओं कि युवा सिर्फ समस्या न देखे बल्कि समाधान के बारे में भी सोचे। और कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है। कुछ दिनों की उपस्थिति के बाद विसर्जन होता है। ये दृश्य हमें एक सुंदर बात याद दिला सकता है कि जीवन में कुछ चीजें आती है, हमें अनुभव देती है और फिर आगे बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: त्योहार भी आता है कशिश और चला जाता है, समय भी आता है और गुजर जाता है।

0: जाता है, बचपन भी गुजर जाता है, स्कूल और कॉलेज के दिन भी गुजर जाते हैं। श्रोताओं, लोगों की भूमिकाएं बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन इन बदलावों के बीच हमारी सीख हमारे साथ रह जाती है।
1: हाँ।
0: इसलिए बप्पा की विदाई के साथ सिर्फ ये न सोचे कि उत्सव खत्म हो गया, बल्कि आप खुद से पूछे कि मैं इस उत्सव से अपने जीवन में क्या लेकर जा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: क्या मैं धैर्य लेकर जा रहा हूँ? क्या मैं सकारात्मक सोच लेकर जा रहा हूँ? क्या मैं पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को लेकर जा रहा हूँ? क्या मैं अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेकर जा रहा हूँ? क्या मैं अपने सपनों को थोड़ा और गंभीरता से लेने का निर्णय लेकर जा रहा हूँ? अगर हाँ, तो त्योहार हमारे लिए सिर्फ कुछ दिनों का आयोजन नहीं रहा, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अनंत चतुर्दशी, जब हम अनंत शब्द सुने श्रोता साथ, तो इसे केवल एक धार्मिक शब्द की तरह हम न देखें।
0: बिल्कुल।
1: इसे अपने जीवन से जोड़ कर भी देखें कि हमारी परिस्थितियां सीमित हो सकती है, हमारे संसाधन सीमित हो सकते हैं, हमारा समय सीमित हो सकता है, लेकिन सीखने की इच्छा को हम सीमित क्यों करें?
0: बिल्कुल।
1: सपने देखने की क्षमता को हम सीमित क्यों करें साथियों? नई शुरुआत करने का साहस सीमित क्यों हो? दूसरों के लिए अच्छा करने की भावनाएं सीमित क्यों हो? शायद अनंत बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ हासिल कर लें, बल्कि अनंत बनने का अर्थ है हर दिन अपने भीतर एक नई संभावनाएं को जगह देना।
0: जी हाँ।
1: आज जहाँ है वहीं से आगे बढ़ना है, आज जितना जानते हैं उससे थोड़ा और सीखना है युवा साथियों, आज जितना आप सोचते हैं उससे थोड़ा और बड़ा सोचना है, और जब कोई रास्ता बंद मिले तो ये मानकर नहीं बैठ जाना है कि यात्रा खत्म हो चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज आप एक छोटा सा सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा कि मेरी सोच की सीमा कहाँ है और क्या मैं उसे थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जागृति जी, जिंदगी में सबसे खूबसूरत बदलाव तब आता है जब इंसान परिस्थितियों से पूछना बंद कर देता है कि मैं कितना कर सकता हूँ, और खुद से पूछना ये शुरू करता है कि मैं और क्या सीख सकता हूँ।
0: जी हाँ।
1: दोस्तों, हम सभी के द्वारा बप्पा से यही प्रार्थना है कि हमारे भीतर बुद्धि हो, धैर्य हो, सही दिशा हो, और हमारी संभावनाओं को पहचानने का हमारे अंदर साहस हो।
0: बिल्कुल। इसलिए कहा गया है कशिश की, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल दिया। तो याद रखिए श्रोता साथियों, सोच छोटी हो तो अवसर भी छोटे दिखाई देते हैं, सोच बड़ी हो तो रास्ते तलाशने की हिम्मत भी पैदा होती है।
1: जी
0: इसी
1: हाँ।
0: उम्मीद के साथ, इसी सकारात्मक सोच और इसी अनंत संभावनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं, पर जाने से पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भाइयों ने बोनो जई वरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ियो बोनो रिश्तो है। जे जंगल में हमसे हैं ये इन्होंने रक्षा करे हैं। तो आवो बोना नी भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा। बोना नी आवाज विकास नी असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह या आपड़े नी कितली शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
3: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉकेट रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर, लेकर हाजिर हो चुके हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है, बच्चों में अच्छे खान पान की आदतें कैसे विकसित करें। जी हाँ, बच्चा खाना देखकर मुंह बना ले, सब्जी देखते ही प्लेट दूर कर दे, दूध के लिए बहाने बनाए और हर थोड़ी देर में बिस्किट और नमकीन मांगे, मोबाइल देखते देखते खाना खाए या फिर खाना खाने के लिए माता पिता को उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़े, तो यह स्थिति बहुत से घरों में हमें देखने को मिलती है। अब सवाल ये आता है श्रोता साथियों कि क्या बच्चे की इन आदतों को सिर्फ डांट कर बदला जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों को सिर्फ यह बताना कि यह मत खाओ वह मत खाओ काफी नहीं होता है। उसे धीरे धीरे समझाना, सही विकल्प देना, खाने का समय तय करना और सबसे जरूरी, घर के बड़े खुद अच्छी आदतों का उदाहरण बन सकते हैं। तो आइए, आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारी इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में अच्छे खान पान की आदत हम कैसे विकसित करें। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया कि हमें बच्चों को डांटना नहीं है बल्कि धीरे से उन्हें चीजें समझानी है। इसी बात को समझने के लिए आज सुनिए हमारी कहानी। कहानी है दो महिलाओं की जिनकी बातचीत से सामने आएगा कि बच्चे के खाने की आदतें एक दिन में नहीं बदलती लेकिन प्यार, धैर्य और सही तरीके से जरूर बदल सकती है। तो चलिए सुनते हैं प्लेट में आया बदलाव। अरे यार, आज तो सुबह से ही परेशान हूँ कविता में। समझ ही नहीं आ रहा कि इस बच्चे को क्या खिलाऊं। नाश्ता सामने रखती हूँ तो कहता है मुझे नहीं खाना, दूध देती हूँ तो मुंह बना लेता है और सब्जी तो उसकी प्लेट में जाती ही नहीं है।
1: अरे सुनीता, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कुछ दिन से ही ऐसा कर रहा है क्या?
0: कुछ दिन से नहीं, काफी समय हो गया है कविता। पहले तो मुझे लगा कि बच्चे हैं, थोड़ा बहुत नखरा करते हैं, लेकिन अब तो हालात ये हैं कि सुबह उठते ही बिस्किट चाहिए। दोपहर में खाना खाने बैठता है तो सब्जी देखकर कह देता है कि मुझे यह नहीं पसंद।
1: ओह, फिर तुम क्या करती हो?
0: क्या करूं? खाना नहीं खाएगा तो भूखा रह जाएगा, इसलिए उसकी पसंद की चीज बना देती हूँ। कभी नूडल्स, कभी नमकीन की रोटी, कभी पराठा, जो मांगता है वही दे देती हूँ।
1: अच्छा, और फल का क्या?
0: फल भी रखती हूँ लेकिन हाथ ही नहीं लगाता। चिप्स का पैकेट दिखा तो तुरंत खत्म कर देता है।
1: ओ, मोबाइल देखकर खाना खाता है क्या?
0: हाँ, वो भी एक समस्या है। बिना मोबाइल के तो खाना ही नहीं चाहता। कार्टून चला दो फिर दो चार निवाले उसके मुंह में ही डालती हूँ।
1: मतलब बच्चा खाना कम और मोबाइल ज्यादा देखता है।
0: अब तो मुझे खुद लगता है कि मैंने ही इसकी आदत बिगाड़ दी है।
1: अरे सुनीता, अपने आप को दोष देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अब धीरे धीरे तुम्हें आदत बदलनी जरूर पड़ेगी।
0: सही कह रही हो कविता, मैंने बहुत कोशिश की। एक दिन मोबाइल बंद किया तो उसने खाना ही नहीं खाया, बहुत रोया, आखिर में मुझे मोबाइल देना पड़ा।
1: यही तो बात है, आदत अगर लंबे समय से बनी है तो एक दिन में तो नहीं जाएगी। बच्चे को अचानक हर चीज से रोकने के बजाय हमें धीरे धीरे बदलाव करने होंगे।
0: सही कह रही हो। पहले तो मैं सोचती थी कि बच्चा है, जो मांग रहा है दे दो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हर मांग पूरी करना सही नहीं था।
1: देखो, बच्चा खुद से यह नहीं तय कर सकता कि उसके लिए रोज क्या अच्छा है और क्या नहीं, उसे घर से सीखना पड़ता है।
0: लेकिन उसे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो खाता ही नहीं है कविता।
1: अच्छा, एक बात बताऊं तुम्हें, बच्चे को किसी चीज से नफरत करवाने में हम बड़े भी कभी कभी मदद कर देते हैं।
0: वो कैसे?
1: मान लो तुमने एक दिन पालक की सब्जी बनाई और बच्चे ने मना कर दिया। तुमने कहा अच्छा मत खा, फिर अगले दिन उसके लिए अलग से उसकी पसंद का तुमने खाना बना दिया। तो बच्चे ने इससे क्या सीखा? उसे तो पालक पसंद ही नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो तुम, सब्जी से मना करो और अपनी पसंद की चीज मिल जाएगी तो बच्चे तो ये बात अवश्य करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर क्या करूं? भूखा थोड़ी रख सकती हूँ।
1: अरे भूखा रखना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर बार उसकी मांग पर अलग खाना बनाना भी जरूरी नहीं है। घर में जो पौष्टिक खाना बना है उसमें से उसकी पसंद की कोई चीज साथ रख दो। धीरे धीरे नए स्वाद से बच्चे को परिचित कराओ।
0: मतलब जबरदस्ती ना करूं?
1: नहीं, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करनी है। बच्चे को प्लेट दिखाकर डांटना नहीं है कि इतना खाना है तो खत्म करो, बल्कि उसे खाने से दोस्ती करवानी है।
0: अच्छा ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करती हूँ। अरे कविता।
1: हाँ सुनीता।
0: तुम्हारी बातों से वास्तव में बदलाव शुरू हो गया।
1: अच्छा, ऐसा क्या हो गया?
0: अरे मैंने बताया था ना तुम्हें कि मेरा बेटा सुबह उठते ही बिस्किट खाता था। अब मैंने सुबह उठते ही बिस्किट देना बंद कर दिया।
1: अच्छा, फिर क्या करता है तुम्हारा बच्चा?
0: पहले दिन खूब नाराज हुआ, बोला बिस्किट चाहिए, बिस्किट चाहिए। मैंने कहा पहले नाश्ता करो फिर मिलेगा, लेकिन उसने खाना ही नहीं खाया।
1: फिर
0: मैंने उसे डांटा नहीं मैंने उसकी पसंद की चीजों में थोड़ा बदलाव किया। कभी पोहे में मूंगफली सब्जियां डाल कर दिया, तो कभी रोटी के साथ दही, कभी घर का बना पराठा, तो थोड़ा फल दे दिया।
1: और उसने खाया?
0: पहले तो बहुत कम, लेकिन फिर कविता मैंने जबरदस्ती भी नहीं की। 2-3 दिन बाद उसने थोड़ा ज्यादा खाना अपने आप ही शुरू कर दिया।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा तुमने, बच्चा भूखा नहीं रहना चाहता, बस उसे सही विकल्प और समय चाहिए होते हैं।
0: और एक बात मैंने और भी बदली है।
1: वो क्या?
0: पहले मैं खुद चाय के साथ नमकीन और बिस्किट खाती थी और बच्चा पास में बैठा रहता था, फिर मैं उसे कहती थी तुम मत खाना।
1: अरे बच्चे तो वही सीखेंगे ना जो सामने देखेंगे।
0: तो अब मैंने उसके सामने बार बार पैकेट वाली चीजें खाना कम कर दिया है। घर में फल रखती हूँ और कभी कभी उसे खुद चुनने देती हूँ कि केला खाना है या सेब।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे में बच्चे को निर्णय लेने में थोड़ा शामिल करने से उसकी रुचि और बढ़ती है।
0: और तुम्हें मालूम है कविता, एक और तरीका अपनाया है अब तो मैंने।
1: अब क्या नया किया सुनीता?
0: पहले मैं उसकी प्लेट भरकर सामने रख देती थी, प्लेट देखकर ही बोल देता है इतना सारा नहीं खाना।
1: अच्छा, फिर?
0: फिर क्या, अब मैं थोड़ी मात्रा में रखती हूँ, जब वह खत्म कर देता है तो पूछती हूँ और चाहिए क्या।
1: ओ, ये तो बहुत जरूरी बात है, बच्चे की भूख हर दिन एक जैसी नहीं होती है।
0: पहले मैं सोचती थी कि प्लेट पूरी खत्म करनी ही चाहिए, अब मैं उसे आराम से खाने देती हूँ।
1: और खाने के समय टीवी या मोबाइल,
0: उसे भी मैं अब धीरे धीरे कम कर रही हूँ, शायद हो सकता है कि कम हो जाए।
1: अच्छा, वो कैसे?
0: अरे कविता, तुम तो जानती ही हो ना, अचानक तो मैं बंद कर नहीं सकती। पहले रोज खाने के समय मोबाइल चलता था, मैंने पहले एक समय का खाना मोबाइल के बिना करवाना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो बार बार पूछता था मोबाइल कब मिलेगा।
1: फिर
0: मैंने उससे बात करना शुरू किया, पूछा आज क्या हुआ, तुमने कौन सा गेम खेला, स्कूल में क्या सीखा। पहले वह खाना छोड़कर बातें करता था, फिर धीरे धीरे खाने और बातचीत दोनों में रुचि आने लग गई उसको।
1: अरे वाह, यानी कि खाने की मेज सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं रही, अब तुम्हारी परिवार के साथ बैठने की जगह बन गई है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन तुमने बताया था कि उसे फल सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसमें भी कुछ बदलाव आया है क्या?
0: उसमें सबसे ज्यादा समय लगा मुझे।
1: ऐसा क्या किया?
0: पहले मैं कहती थी सब्जी खाओ नहीं तो ताकत नहीं आएगी, वह सुनते ही मुंह फेर लेता था।
1: फिर
0: मैंने तरीका बदला, उसे सब्जी खरीदते समय अपने साथ ले जाने लगी, बाजार में उससे पूछती आज कौन सी सब्जी लें।
1: अच्छा,
0: फिर घर पर उसे सब्जी धोने में छोटी सी मदद लेने लगी, खाना बनाते समय बताती कि आज हमने कौन सी सब्जी बनाई है।
1: इससे उसे लगा कि वह भी इस काम का हिस्सा है।
0: और फिर मैंने उसकी पसंद की चीजों के साथ नई चीज मिलाना शुरू कर दिया, जैसे कि पराठा पसंद था तो कभी उसमें बारीक कटी सब्जियां डाल दी, दही पसंद था तो उसके साथ फल दिया, कभी दाल के साथ अलग अलग सब्जियां रखी। इस तरीके से मैंने बदलाव कर दिया।
1: बिल्कुल, बदलाव की कोशिश तो अच्छी है, लेकिन अब क्या हो रहा है?
0: अब हर सब्जी नहीं खाता, लेकिन पहले की तरह प्लेट देखकर भागता भी नहीं है।
1: यही तो बदलाव है। अच्छी आदत का मतलब ये नहीं है सुनीता कि बच्चा एक दिन में हर चीज खाने लगे। मतलब ये है कि वह नए भोजन को स्वीकार करना धीरे धीरे सीख रहा है।
0: अरे, इतना करने के बाद भी एक परेशानी अभी भी बनी हुई है कविता।
1: परेशानी? कौन सी परेशानी?
0: चॉकलेट, चिप्स और नमकीन।
1: अरे, अभी तक वो समस्या खत्म नहीं हुई है क्या? कोई बात नहीं, बच्चों को कभी कभी पसंद की चीजें चाहिए भी होती है। हर चीज पर पूरी रोक लगाना जरूरी नहीं होता सुनीता, लेकिन इन्हें रोज की आदत भी नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखना।
0: अरे पहले तो हर दिन स्कूल से आते ही पैकेट मांगता था,
1: और अब?
0: अब मैंने घर पर कुछ विकल्प तैयार करना शुरू कर दिया है, कभी भुना चना, कभी मखाना, कभी फल, कभी घर का बना नाश्ता, जो उपलब्ध होता उसमें से चुनने देती थी।
1: अच्छा, तो ये तो खाने की बात हुई, लेकिन पानी का क्या?
0: अरे क्या बताऊं, पहले पानी की जगह बार बार अलग अलग चीजें खाने के लिए कहता था, बाजार में आजकल मिलते हैं ना वो मीठे पे।
1: अच्छा,
0: लेकिन
1: अब उसकी पानी की बोतल हमेशा साथ रहती है।
0: ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन बच्चों में पानी पीने की आदत भी बहुत जरूरी होती है।
1: मैंने उसे यह भी सिखाया कि प्यास लगने का इंतजार किए बिना दिन में समय समय पर पानी पीना है।
0: अच्छा एक बात बताओ सुनीता, घर के बाकी लोग भी इन बदलावों के साथ खड़े हैं क्या?
1: अब दे रहे हैं। पहले तो दिक्कत यही थी कि मैं बच्चे को कहती थी चिप्स मत खाओ, और घर में कोई दूसरा उसके सामने चिप्स खा रहा होता था।
0: ओ, फिर तो बच्चा कैसे समझेगा?
1: अब हमने तय किया है कि बच्चे के सामने खाने पीने की आदतों में हम सावधानी रखेंगे। खाना समय पर खाना, फल सब्जियां खाना, पानी पीना और भोजन की बर्बादी न करना, इन सब में हम खुद उदाहरण बनने की कोशिश कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छा तरीका है। बच्चे कानों से जितना सीखते हैं ना, आंखों से उससे कई ज्यादा सीखते हैं।
1: और अब तो कभी कभी वो खुद मुझे बोलता है, मम्मी आज फल खाया।
0: अच्छा, यानी कि अब बच्चा तुम्हें भी याद दिलाने लगा है।
1: हाँ, और पिछले रविवार को उसने खुद कहा आज सब साथ बैठकर खाना खाएंगे।
0: अरे वाह, बस यही तो असली बदलाव है।
1: पहले खाने के समय में कविता हमारे घर में रोज लड़ाई का समय होता था,
0: और अब?
1: अब भी कभी वह खाना छोड़ देता है, कभी कोई सब्जी पसंद नहीं करता, कभी ज्यादा खेलने के चक्कर में देर करता है, लेकिन अब मैं हर बार गुस्सा नहीं करती हूँ।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है।
1: क्योंकि मैंने समझा कि बच्चे की प्लेट बदलने से पहले हमें अपना तरीका बदलना होगा।
0: बिल्कुल सुनीता,
1: अब मैं उसे डरा कर नहीं खिलाती हूँ, नहीं खाया तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, नहीं लालच देती हूँ कि सब्जी खाओगे तो चॉकलेट दूंगी।
0: तो फिर क्या करती हो तुम?
1: अरे मैं उसे बताती हूँ कि खाना हमारे शरीर को काम करने की ताकत देता है, अलग अलग चीजें शरीर के अलग अलग काम में मदद करती हैं, और सबसे जरूरी, खाना कोई परीक्षा नहीं है कि प्लेट पूरी साफ करनी है।
0: अच्छा, लेकिन तुम जो ये सारी चीजें जब अपने बच्चे को बताते हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बच्चे ने क्या सीखा?
1: अरे उसने सीखा कि खाना समय पर खाना है, धीरे धीरे खाना है, हाथ साफ करके खाना है, और पानी पीना है, फल सब्जियों को मौका देना है, और हर दिन पैकेट वाली चीजें नहीं मांगनी है।
0: और तुमने?
1: मैंने भी सीखा कि बच्चों की आदत बदलने के लिए सिर्फ बच्चे को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पूरे घर का माहौल बदलना पड़ता है।
0: सही कहा सुनीता, अच्छी खान पान की आदतें बच्चे को डांट कर नहीं, बल्कि रोज रोज के छोटे छोटे उदाहरणों से ही सिखाई जा सकती है।
1: और शुरुआत आज से करें श्रोता साथियों, तो धीरे धीरे हमारे घर के खाने की मेज भी बदल सकती है।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों, आपने सुना, एक बच्चे की आदतें अचानक नहीं बदलती, न कोई जादू हुआ, न कोई एक दिन का नियम काम आया, बदलाव आया धीरे धीरे। बिस्किट की जगह पौष्टिक नाश्ता आया, मोबाइल की जगह बातचीत ने जगह ली, प्लेट भर कर खिलाने की जगह बच्चे की भूख को समझना शुरू किया गया, सब्जी से भागने वाले बच्चों को सब्जी चुनने और तैयार करने में शामिल किया गया, हर मांग पूरी करने के बजाय घर में बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए गए, और सबसे बड़ी बात, माँ ने सिर्फ बच्चे को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद भी अपनी आदतों में ध्यान दिया। तो श्रोता साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम की सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में अच्छे खानपान की आदत हम कैसे विकसित करें। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया कि हमें बच्चों को डांटना नहीं है बल्कि धीरे से उन्हें चीजें समझानी है। इसी बात को समझने के लिए आज सुनिए हमारी कहानी। कहानी है दो महिलाओं की जिनकी बातचीत से सामने आएगा कि बच्चे के खाने की आदतें एक दिन में नहीं बदलती लेकिन प्यार, धैर्य और सही तरीके से जरूर बदल सकती है। तो चलिए सुनते हैं प्लेट में आया बदलाव। अरे यार, आज तो सुबह से ही परेशान हूँ कविता में। समझ ही नहीं आ रहा कि इस बच्चे को क्या खिलाऊं। नाश्ता सामने रखती हूँ तो कहता है मुझे नहीं खाना, दूध देती हूँ तो मुंह बना लेता है और सब्जी तो उसकी प्लेट में जाती ही नहीं है।
1: अरे सुनीता, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कुछ दिन से ही ऐसा कर रहा है क्या?
0: कुछ दिन से नहीं, काफी समय हो गया है कविता। पहले तो मुझे लगा कि बच्चे हैं, थोड़ा बहुत नखरा करते हैं, लेकिन अब तो हालात ये हैं कि सुबह उठते ही बिस्किट चाहिए। दोपहर में खाना खाने बैठता है तो सब्जी देखकर कह देता है कि मुझे यह नहीं पसंद।
1: ओह, फिर तुम क्या करती हो?
0: क्या करूं? खाना नहीं खाएगा तो भूखा रह जाएगा, इसलिए उसकी पसंद की चीज बना देती हूँ। कभी नूडल्स, कभी नमकीन की रोटी, कभी पराठा, जो मांगता है वही दे देती हूँ।
1: अच्छा, और फल का क्या?
0: फल भी रखती हूँ लेकिन हाथ ही नहीं लगाता। चिप्स का पैकेट दिखा तो तुरंत खत्म कर देता है।
1: ओ, मोबाइल देखकर खाना खाता है क्या?
0: हाँ, वो भी एक समस्या है। बिना मोबाइल के तो खाना ही नहीं चाहता। कार्टून चला दो, फिर दो चार निवाले उसके मुंह में ही डालती हूँ।
1: मतलब बच्चा खाना कम और मोबाइल ज्यादा देखता है?
0: अब तो मुझे खुद लगता है कि मैंने ही इसकी आदत बिगाड़ दी है।
1: अरे सुनीता, अपने आप को दोष देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अब धीरे धीरे तुम्हें आदत बदलनी जरूर पड़ेगी।
0: सही कह रही हो कविता, मैंने बहुत कोशिश की। एक दिन मोबाइल बंद किया तो उसने खाना ही नहीं खाया, बहुत रोया। आखिर में मुझे मोबाइल देना पड़ा।
1: यही तो बात है, आदत अगर लंबे समय से बनी है तो एक दिन में तो नहीं जाएगी। बच्चे को अचानक हर चीज से रोकने के बजाय हमें धीरे धीरे बदलाव करने होंगे।
0: सही कह रही हो। पहले तो मैं सोचती थी कि बच्चा है, जो मांग रहा है दे दो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हर मांग पूरी करना सही नहीं था।
1: देखो, बच्चा खुद से यह नहीं तय कर सकता कि उसके लिए रोज क्या अच्छा है और क्या नहीं, उसे घर से सीखना पड़ता है।
0: लेकिन उसे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो खाता ही नहीं है कविता।
1: अच्छा, एक बात बताऊं तुम्हें, बच्चे को किसी चीज से नफरत करवाने में हम बड़े भी कभी कभी मदद कर देते हैं।
0: वो कैसे?
1: मान लो तुमने एक दिन पालक की सब्जी बनाई और बच्चे ने मना कर दिया। तुमने कहा अच्छा मत खा, फिर अगले दिन उसके लिए अलग से उसकी पसंद का तुमने खाना बना दिया। तो बच्चे ने इससे क्या सीखा? उसे तो पालक पसंद ही नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो तुम, सब्जी से मना करो और अपनी पसंद की चीज मिल जाएगी तो बच्चे तो ये बात अवश्य करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर क्या करूं, भूखा थोड़ी रख सकती हूँ।
1: अरे भूखा रखना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर बार उसकी मांग पर अलग खाना बनाना भी जरूरी नहीं है। घर में जो पौष्टिक खाना बना है उसमें से उसकी पसंद की कोई चीज साथ रख दो। धीरे धीरे नए स्वाद से बच्चे को परिचित कराओ।
0: मतलब जबरदस्ती ना करूं?
1: नहीं, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करनी है। बच्चे को प्लेट दिखाकर डांटना नहीं है कि इतना खाना है तो खत्म करो, बल्कि उसे खाने से दोस्ती करवानी है।
0: अच्छा ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करती हूँ। अरे कविता।
1: हाँ सुनीता।
0: तुम्हारी बातों से वास्तव में बदलाव शुरू हो गया।
1: अच्छा, ऐसा क्या हो गया?
0: अरे मैंने बताया था ना तुम्हें कि मेरा बेटा सुबह उठते ही बिस्किट खाता था। अब मैंने सुबह उठते ही बिस्किट देना बंद कर दिया।
1: अच्छा, फिर क्या करता है तुम्हारा बच्चा?
0: पहले दिन खूब नाराज हुआ, बोला बिस्किट चाहिए, बिस्किट चाहिए। मैंने कहा पहले नाश्ता करो फिर मिलेगा, लेकिन उसने खाना ही नहीं खाया।
1: फिर
0: मैंने उसे डांटा नहीं, मैंने उसकी पसंद की चीजों में थोड़ा बदलाव किया। कभी पोहे में मूंगफली सब्जियां डालकर दिया, तो कभी रोटी के साथ दही, कभी घर का बना पराठा, तो थोड़ा फल दे दिया।
1: और उसने खाया?
0: पहले तो बहुत कम, लेकिन फिर कविता मैंने जबरदस्ती भी नहीं की। 2-3 दिन बाद उसने थोड़ा ज्यादा खाना अपने आप ही शुरू कर दिया।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा तुमने, बच्चा भूखा नहीं रहना चाहता, बस उसे सही विकल्प और समय चाहिए होते हैं।
0: और एक बात मैंने और भी बदली है।
1: वो क्या?
0: पहले मैं खुद चाय के साथ नमकीन और बिस्किट खाती थी और बच्चा पास में बैठा रहता था, फिर मैं उसे कहती थी तुम मत खाना।
1: अरे बच्चे तो वही सीखेंगे ना जो सामने देखेंगे।
0: तो अब मैंने उसके सामने बार बार पैकेट वाली चीजें खाना कम कर दिया है। घर में फल रखती हूँ और कभी कभी उसे खुद चुनने देती हूँ कि केला खाना है या सेब।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे में बच्चे को निर्णय लेने में थोड़ा शामिल करने से उसकी रुचि और बढ़ती है।
0: और तुम्हें मालूम है कविता, एक और तरीका अपनाया है अब तो मैंने।
1: अब क्या नया किया सुनीता?
0: पहले मैं उसकी प्लेट भरकर सामने रख देती थी, प्लेट देखकर ही बोल देता है इतना सारा नहीं खाना।
1: अच्छा, फिर?
0: फिर क्या, अब मैं थोड़ी मात्रा में रखती हूँ, जब वह खत्म कर देता है तो पूछती हूँ और चाहिए क्या।
1: ओ, ये तो बहुत जरूरी बात है, बच्चे की भूख हर दिन एक जैसी नहीं होती है।
0: पहले मैं सोचती थी कि प्लेट पूरी खत्म करनी ही चाहिए, अब मैं उसे आराम से खाने देती हूँ।
1: और खाने के समय टीवी या मोबाइल,
0: उसे भी मैं अब धीरे धीरे कम कर रही हूँ, शायद हो सकता है कि कम हो जाए।
1: अच्छा, वो कैसे?
0: अरे कविता, तुम तो जानती ही हो ना, अचानक तो मैं बंद कर नहीं सकती। पहले रोज खाने के समय मोबाइल चलता था, मैंने पहले एक समय का खाना मोबाइल के बिना करवाना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो बार बार पूछता था मोबाइल कब मिलेगा।
1: फिर
0: मैंने उससे बात करना शुरू किया, पूछा आज क्या हुआ, तुमने कौन सा गेम खेला, स्कूल में क्या सीखा। पहले वह खाना छोड़कर बातें करता था, फिर धीरे धीरे खाने और बातचीत दोनों में रुचि आने लग गई उसको।
1: अरे वाह, यानी कि खाने की मेज सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं रही, अब तुम्हारी परिवार के साथ बैठने की जगह बन गई है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन तुमने बताया था कि उसे फल सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसमें भी कुछ बदलाव आया है क्या?
0: उसमें सबसे ज्यादा समय लगा मुझे।
1: ऐसा क्या किया?
0: पहले मैं कहती थी सब्जी खाओ नहीं तो ताकत नहीं आएगी, वह सुनते ही मुंह फेर लेता था।
1: फिर
0: मैंने तरीका बदला, उसे सब्जी खरीदते समय अपने साथ ले जाने लगी, बाजार में उससे पूछती आज कौन सी सब्जी ले।
1: अच्छा,
0: फिर घर पर उसे सब्जी धोने में छोटी सी मदद लेने लगी, खाना बनाते समय बताती कि आज हमने कौन सी सब्जी बनाई है।
1: इससे उसे लगा कि वह भी इस काम का हिस्सा है।
0: और फिर मैंने उसकी पसंद की चीजों के साथ नई चीज मिलाना शुरू कर दिया, जैसे कि पराठा पसंद था तो कभी उसमें बारीक कटी सब्जियां डाल दी, दही पसंद था तो उसके साथ फल दिया, कभी दाल के साथ अलग अलग सब्जियां रखी। इस तरीके से मैंने बदलाव कर दिया।
1: बिल्कुल, बदलाव की कोशिश तो अच्छी है, लेकिन अब क्या हो रहा है?
0: अब हर सब्जी नहीं खाता, लेकिन पहले की तरह प्लेट देखकर भागता भी नहीं है।
1: यही तो बदलाव है। अच्छी आदत का मतलब ये नहीं है सुनीता कि बच्चा एक दिन में हर चीज खाने लगे। मतलब ये है कि वह नए भोजन को स्वीकार करना धीरे धीरे सीख रहा है।
0: अरे, इतना करने के बाद भी एक परेशानी अभी भी बनी हुई है कविता।
1: परेशानी? कौन सी परेशानी?
0: चॉकलेट, चिप्स और नमकीन।
1: अरे, अभी तक वो समस्या खत्म नहीं हुई है क्या? कोई बात नहीं, बच्चों को कभी कभी पसंद की चीजें चाहिए भी होती है। हर चीज पर पूरी रोक लगाना जरूरी नहीं होता सुनीता, लेकिन इन्हें रोज की आदत भी नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखना।
0: अरे पहले तो हर दिन स्कूल से आते ही पैकेट मांगता था,
1: और अब?
0: अब मैंने घर पर कुछ विकल्प तैयार करना शुरू कर दिया है, कभी भुना चना, कभी मखाना, कभी फल, कभी घर का बना नाश्ता, जो उपलब्ध होता उसमें से चुनने देती थी।
1: अच्छा, तो ये तो खाने की बात हुई, लेकिन पानी का क्या?
0: अरे क्या बताऊं, पहले पानी की जगह बार बार अलग अलग चीजें खाने के लिए कहता था, बाजार में आजकल मिलते हैं ना वो मीठे पे।
1: अच्छा,
0: लेकिन अब उसकी पानी की बोतल हमेशा साथ रहती है।
1: ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन बच्चों में पानी पीने की आदत भी बहुत जरूरी होती है।
0: मैंने उसे यह भी सिखाया कि प्यास लगने का इंतजार किए बिना दिन में समय समय पर पानी पीना है।
1: अच्छा एक बात बताओ सुनीता, घर के बाकी लोग भी इन बदलावों के साथ खड़े हैं क्या?
0: अब दे रहे हैं। पहले तो दिक्कत यही थी कि मैं बच्चे को कहती थी चिप्स मत खाओ, और घर में कोई दूसरा उसके सामने चिप्स खा रहा होता था।
1: ओ, फिर तो बच्चा कैसे समझेगा?
0: अब हमने तय किया है कि बच्चे के सामने खाने पीने की आदतों में हम सावधानी रखेंगे। खाना समय पर खाना, फल सब्जियां खाना, पानी पीना और भोजन की बर्बादी न करना, इन सब में हम खुद उदाहरण बनने की कोशिश कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छा तरीका है। बच्चे कानों से जितना सीखते हैं ना, आंखों से उससे कई ज्यादा सीखते हैं।
0: और अब तो कभी कभी वो खुद मुझे बोलता है, मम्मी आज फल खाया।
1: अच्छा, यानी कि अब बच्चा तुम्हें भी याद दिलाने लगा है।
0: हाँ, और पिछले रविवार को उसने खुद कहा आज सब साथ बैठकर खाना खाएंगे।
1: अरे वाह, बस यही तो असली बदलाव है।
0: पहले खाने के समय में कविता हमारे घर में रोज लड़ाई का समय होता था,
1: और अब
0: भी कभी वह खाना छोड़ देता है, कभी कोई सब्जी पसंद नहीं करता, कभी ज्यादा खेलने के चक्कर में देर करता है, लेकिन अब मैं हर बार गुस्सा नहीं करती हूँ।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है।
0: क्योंकि मैंने समझा कि बच्चे की प्लेट बदलने से पहले हमें अपना तरीका बदलना होगा।
1: बिल्कुल सुनीता,
0: अब मैं उसे डरा कर नहीं खिलाती हूँ, नहीं खाया तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, न ही लालच देती हूँ कि सब्जी खाओगे तो चॉकलेट दूंगी।
1: तो फिर क्या करती हो तुम?
0: अरे मैं उसे बताती हूँ कि खाना हमारे शरीर को काम करने की ताकत देता है, अलग अलग चीजें शरीर के अलग अलग काम में मदद करती हैं, और सबसे जरूरी, खाना कोई परीक्षा नहीं है कि प्लेट पूरी साफ करनी है।
1: अच्छा, लेकिन तुम जो ये सारी चीजें जब अपने बच्चे को बताते हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बच्चे ने क्या सीखा?
0: अरे उसने सीखा कि खाना समय पर खाना है, धीरे धीरे खाना है, हाथ साफ करके खाना है, और पानी पीना है, फल सब्जियों को मौका देना है, और हर दिन पैकेट वाली चीजें नहीं मांगनी है।
1: और तुमने?
0: मैंने भी सीखा कि बच्चों की आदत बदलने के लिए सिर्फ बच्चे को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पूरे घर का माहौल बदलना पड़ता है।
1: सही कहा सुनीता, अच्छी खान पान की आदतें बच्चे को डांट कर नहीं, बल्कि रोज रोज के छोटे छोटे उदाहरणों से ही सिखाई जा सकती है।
0: और शुरुआत आज से करें श्रोता साथियों, तो धीरे धीरे हमारे घर के खाने की मेज भी बदल सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आपने सुना, एक बच्चे की आदतें अचानक नहीं बदलती, न कोई जादू हुआ, न कोई एक दिन का नियम काम आया, बदलाव आया धीरे धीरे। बिस्किट की जगह पौष्टिक नाश्ता आया, मोबाइल की जगह बातचीत ने जगह ली, प्लेट भर कर खिलाने की जगह बच्चे की भूख को समझना शुरू किया गया, सब्जी से भागने वाले बच्चों को सब्जी चुनने और तैयार करने में शामिल किया गया, हर मांग पूरी करने के बजाय घर में बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए गए, और सबसे बड़ी बात, माँ ने सिर्फ बच्चे को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद भी अपनी आदतों में ध्यान दिया। तो श्रोता साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम की सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: साथियों, अनंत यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका अंत दिखाई न दे, और अगर हम इस विचार को अपने जीवन से जोड़े तो एक बहुत खूबसूरत सवाल सामने आता है कि क्या हमारी सोच भी अनंत हो सकती है।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, इन्हीं बातों के साथ आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
1: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
0: लेकर हाजिर श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है अनंत चतुर्दशी और अनंत बनने की कोशिश। क्या हमारी सोच भी अनंत हो सकती है? साथियों, जैसे कि जब हम अनंत चतुर्दशी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में गणपति बप्पा की विदाई, पूजा पाठ, उत्सव, भक्ति और विसर्जन की तस्वीर उभरती है।
1: बिल्कुल,
0: कई दिनों तक हमारे बीच रहने के बाद बप्पा को विदाई दी जाती है। लेकिन क्या श्रोता साथियों, आपने कभी सोचा है कि इस विदाई के पीछे छिपा संदेश सिर्फ धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है?
1: बिल्कुल,
0: अनंत चतुर्दशी हमें अनंत शब्दों पर सोचने का भी अवसर देता है। अनंत यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका अंत दिखाई न दे, और अगर हम इसी विचार को अपने जीवन से जोड़े तो एक बहुत खूबसूरत सवाल सामने आता है कि क्या हमारी सोच भी अनंत हो सकती है?
1: बिल्कुल,
0: क्या हम अपनी सोच को अपनी परिस्थितियों, असफलताओं, डर, लोगों की राय और छोटी से छोटी सीमाओं तक सीमित रखने के बजाय उसे बड़ा कर सकते हैं? तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी सवाल पर बात करने वाले हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन शुरुआत में जैसा कि गीत संगीत हमारे दोस्तों को हम सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना शुरुआत पहले एक प्यारे से गीत के साथ ही हम करें।
0: जी हाँ, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारा आपके साथ बातचीत का जुड़ चुका है। हम बात कर रहे हैं अनंत चतुर्दशी और अनंत बनने की कोशिश को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: और जानेंगे कि क्या हमारी सोच भी अनंत हो सकती है। जागृति जी, हम देखते हैं कि अनंत का अर्थ सिर्फ अंतहीन नहीं बल्कि असीम संभावनाएं भी होती है।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि दोस्तों, अनंत शब्द सुनते ही हमारे मन में कुछ ऐसा आता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जीवन में अनंत होने का मतलब ये भी नहीं है कि इंसान हर चीज में सबसे आगे निकल जाए।
1: जी हाँ।
0: या उसके पास सब कुछ हो। जागृति जी, अनंत सोच का मतलब होता है सीखने की कोई सीमा न रखना। जैसे कि एक युवा कहता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, लेकिन अनंत सोच कहती है कि मैं अभी इतना कर पा रहा हूँ लेकिन मैं और भी सीख सकता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: एक युवा कहेगा कि मुझसे एक बार गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ। लेकिन उसकी अनंत सोच उससे कहती है, गलती हुई है लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
1: बिल्कुल।
0: वही युवा कहता है कि मेरे पास साधन कम है, लेकिन उसके अंदर की अनंत सोच उससे कहती है, साधन कम हो सकते हैं लेकिन रास्ते खोजे जा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, यही सोच किसी व्यक्ति की दिशा को बदल सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि अक्सर हमारे सामने सबसे बड़ी बाधा कोई परिस्थिति नहीं होती बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। श्रोता साथियों, जैसे कि कहना चाहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास मौका नहीं है, लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गया तो, मेरे जैसे छोटे शहर या गांव से आने वाले लोग कितने आगे जा सकते हैं, और धीरे धीरे ये बातें हमारी सोच की दीवार बन जाती है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन जरा सोचिए श्रोताओं कि अगर हर इंसान अपनी पहली असफलता के बाद रुक जाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को पहली बार किसी विषय में अंक कम मिले और वो मान ले कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, तो क्या वो कभी बेहतर कर पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: अगर कोई युवा पहली नौकरी के लिए प्रयास करे और असफल हो जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके लिए भी रास्ते बंद हो जाए। बिल्कुल नहीं। एक रास्ते का बंद होना पूरी यात्रा का अंत नहीं हो सकता।
0: जी हाँ जागृति जी, ऐसे में अनंत सोच का पहला कदम है श्रोता साथियों, मैं सीख सकता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि आज के युवाओं के लिए सबसे जरूरी बातों में से एक है लर्निंग माइंडसेट, जैसे कि सीखते रहने की मानसिकता।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि मैं आज से थोड़ा और क्या सीख सकता हूँ। नई भाषा सीखना हो, कोई कौशल सीखना हो साथियों, खेती की कोई नई तकनीक समझनी हो, कंप्यूटर सीखना हो, रेडियो प्रोडक्शन सीखना हो, कैमरा चलाना हो, या किसी परीक्षा की तैयारी करनी हो।
1: जी हाँ।
0: या फिर अपने व्यवहार को बेहतर ही क्यों न बनाना हो। हर जगह सीखने की संभावनाएं मौजूद है। ज्ञान की दुनिया इतनी बड़ी है जागृति जी कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ सीख लिया।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए युवा जीवन में सबसे सुंदर आदत हो सकती है और वो ये है कि हर दिन खुद से ये कहना कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला।
1: बिल्कुल कशिश, और हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, अनंत सोच और सपने, यानी कि सपने भी हमारी सोच का हिस्सा है, लेकिन कई बार हम अपने सपनों को परिस्थितियों के हिसाब से छोटा कर देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम सोचते हैं कि ये सपना मेरे लिए बहुत बड़ा है, मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है, मैं छोटे शहर से हूँ, मेरे पास ज्यादा संसाधन नहीं है, मेरे आसपास कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। लेकिन सपना देखने के लिए हमेशा बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती है। एक छोटे से गांव का युवा भी सपना देख सकता है, एक साधारण परिवार का विद्यार्थी भी नई ऊंचाइयों के बारे में सोच सकता है।
0: बिल्कुल।
1: एक लड़की अपने लिए नए अवसरों की कल्पना कर सकती है, एक किसान का बेटा कृषि के साथ तकनीक जोड़ने का सपना भी देख सकता है। सपनों की शुरुआत अक्सर संसाधनों से नहीं, सोच से होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से हमारी बातें श्रोता साथियों से चली रही हैं अनंत चतुर्दशी के महत्व और अनंत बनने की कोशिश को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें हम आगे भी जारी रखेंगे युवा साथियों से, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, अनंत चतुर्दशी और अनंत बनने की कोशिश, क्या हमारी सोच भी अनंत हो सकती है को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम कहना चाहेंगे कि अनंत सोच का मतलब हर चीज में हाँ कहना नहीं है। साथियों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अनंत सोच का अर्थ ये नहीं कि हम बिना सोचे हर काम को करने लगे।
1: बिल्कुल।
0: अनंत सोच का मतलब है कि बिना सीमा के भागना नहीं, बल्कि अपनी संभावनाओं को सीमित करके न बैठ जाना है। हमें अपनी वास्तविक परिस्थितियों को समझना होगा, योजना बनानी होगी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा।
1: बिल्कुल।
0: उदाहरण के लिए आपको बता सकते हैं कि अगर कोई युवा डॉक्टर बनना चाहता है तो सिर्फ सपना देखना पर्याप्त नहीं है, उसे पढ़ाई करनी होगी, सही मार्गदर्शन लेना होगा, समय देना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी।
1: जी हाँ।
0: यानी कि कह सकते हैं कि बड़ी सोच, सही दिशा, लगातार प्रयास, तभी वास्तविक प्रगति संभव है।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही बात करें तो युवाओं के जीवन में असफलता एक ऐसा शब्द है जिससे कई लोग डरते हैं। जैसे कि परीक्षा में कम अंक आ गए तो असफलता मिली, इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ तो उसे असफलता मान लिया जाता है, किसी प्रतियोगिता में हार गए या किसी काम में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला। ऐसे में श्रोता साथियों, हमारा मन कहता है कि बस अब नहीं होगा, लेकिन आपकी अनंत सोच आपसे कहेगी कि एक परिणाम आपके पूरे भविष्य को तय नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल।
1: असफलता हमें ये बता सकती है कि हमें कहां सुधार की जरूरत होती है। अगर परीक्षा में कम अंक आए तो ये देखने का अवसर है साथियों की तैयारी में कमी कहाँ रह गई। अगर इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ तो ये समझा जा सकता है कि अगली बार किस कौशल को बेहतर करना है।
0: बिल्कुल।
1: अगर किसी योजना में सफलता नहीं मिली साथियों, तो उससे अनुभव लिया जा सकता है। इसलिए असफलता को अंतिम दरवाजा समझने के बजाय एक सीखने वाला पड़ाव समझना जरूरी होता है।
0: जी हाँ कशिश, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि दूसरों की सोच हमारी सीमा क्यों बने।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि साथियों, युवाओं के सामने एक और बड़ी चुनौती होती है कि लोग क्या कहेंगे। हम कई बार अपना निर्णय इसलिए बदल देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि दूसरे क्या सोचेंगे।
1: बिल्कुल।
0: अगर मैं ये करूंगा तो लोग हंसेंगे, अगर मैं नया काम शुरू करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन याद रखिए श्रोताओं कि लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन हमारा जीवन हमारे साथ रहता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए सलाह सुनना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सोच और निर्णय को समझना भी जरूरी है। युवाओं को दूसरों की बातों से सीखना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान केवल दूसरों की राय से तय नहीं करनी चाहिए।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि दोस्तों हमारी सोच पर डिजिटल दुनिया का बहुत बड़ा प्रभाव है।
0: बिल्कुल।
1: हम सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों तस्वीरें, वीडियो और विचार देखते रहते हैं। कभी किसी की सफलता देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, तो किसी की उपलब्धि देखकर हमारे युवा साथी सोचते हैं जागृति जी कि उनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा। किसी का नया करियर देखकर हमें अपना रास्ता गलत लगने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ऐसे में हमें याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया किसी की पूरी जिंदगी नहीं दिखाता, सिर्फ उसका चुना हुआ हिस्सा ही दिखाता है। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी दूसरे की दिखाई हुई यात्रा से करना श्रोता साथियों सही बात नहीं है। अनंत सोच का मतलब ये भी है कि हम अपनी यात्रा को समझें। जैसे कि मेरा रास्ता अलग हो सकता है, मेरी गति अलग हो सकती है, लेकिन मेरी संभावनाएं खत्म नहीं हुई है।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को कहेंगे कि अनंत सोच और रचनात्मकता के बारे में, यानी कि जिस युवा की सोच खुली होती है वो समस्याओं में भी अवसर खोज सकता है। जहाँ कोई कहता है कि यह काम मुश्किल है, वहीं दूसरा युवा पूछ सकता है कि इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: जहाँ कोई कहता है कि यहाँ रोजगार नहीं है, वहीं कोई दूसरा सोच सकता है कि यहाँ कौन सी स्थानीय जरूरत है जिससे रोजगार का अवसर बनाया जा सके। यही रचनात्मक सोच समाज को आगे ले जाती है। गांव में स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प, कृषि, पर्यटन, डिजिटल सेवाएं, छोटे व्यवसाय और कौशल आधारित काम, इन सब के नए अवसर तलाशे जा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए जरूरी है श्रोताओं कि युवा सिर्फ समस्या न देखे बल्कि समाधान के बारे में भी सोचे। और कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है। कुछ दिनों की उपस्थिति के बाद विसर्जन होता है। ये दृश्य हमें एक सुंदर बात याद दिला सकता है कि जीवन में कुछ चीजें आती है, हमें अनुभव देती है और फिर आगे बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: त्योहार भी आता है कशिश और चला जाता है, समय भी आता है और गुजर जाता है, बचपन भी गुजर जाता है, स्कूल और कॉलेज के दिन भी गुजर जाते हैं श्रोताओं। लोगों की भूमिकाएं बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन इन बदलावों के बीच हमारी सीख हमारे साथ रह जाती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए बप्पा की विदाई के साथ सिर्फ ये न सोचे कि उत्सव खत्म हो गया, बल्कि आप खुद से पूछे कि मैं इस उत्सव से अपने जीवन में क्या लेकर जा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: क्या मैं धैर्य लेकर जा रहा हूँ, क्या मैं सकारात्मक सोच लेकर जा रहा हूँ, क्या मैं पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को लेकर जा रहा हूँ? क्या मैं अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेकर जा रहा हूँ? क्या मैं अपने सपनों को थोड़ा और गंभीरता से लेने का निर्णय लेकर जा रहा हूँ? अगर हाँ, तो त्योहार हमारे लिए सिर्फ कुछ दिनों का आयोजन नहीं रहा, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अनंत चतुर्दशी जब हम अनंत शब्द सुने श्रोता साथियों, तो इसे केवल एक धार्मिक शब्द की तरह हम न देखें।
0: बिल्कुल,
1: इसे अपने जीवन से जोड़कर भी देखें कि हमारी परिस्थितियां सीमित हो सकती है, हमारे संसाधन सीमित हो सकते हैं, हमारा समय सीमित हो सकता है, लेकिन सीखने की इच्छा को हम सीमित क्यों करें?
0: बिल्कुल,
1: सपने देखने की क्षमता को हम सीमित क्यों करें साथियों? नई शुरुआत करने का साहस सीमित क्यों हो? दूसरों के लिए अच्छा करने की भावनाएं सीमित क्यों हो? शायद अनंत बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ हासिल कर लें, बल्कि अनंत बनने का अर्थ है हर दिन अपने भीतर एक नई संभावनाएं को जगह देना।
0: जी हाँ,
1: आज जहाँ है वहीं से आगे बढ़ना है, आज जितना जानते हैं उससे थोड़ा और सीखना है युवा साथियों, आज जितना आप सोचते हैं उससे थोड़ा और बड़ा सोचना है, और जब कोई रास्ता बंद मिले तो ये मानकर नहीं बैठ जाना है कि यात्रा खत्म हो चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज आप एक छोटा सा सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा कि मेरी सोच की सीमा कहाँ है और क्या मैं उसे थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जागृति जी, जिंदगी में सबसे खूबसूरत बदलाव तब आता है जब इंसान परिस्थितियों से पूछना बंद कर देता है कि मैं कितना कर सकता हूँ, और खुद से पूछना ये शुरू करता है कि मैं और क्या सीख सकता हूँ।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, हम सभी के द्वारा बप्पा से यही प्रार्थना है कि हमारे भीतर बुद्धि हो, धैर्य हो, सही दिशा हो, और हमारी संभावनाओं को पहचानने का हमारे अंदर साहस हो।
0: बिल्कुल, इसीलिए कहा गया है कशिश की गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल दिया। तो याद रखिए श्रोता साथियों, सोच छोटी हो तो अवसर भी छोटे दिखाई देते हैं, सोच बड़ी हो तो रास्ते तलाशने की हिम्मत भी पैदा होती है।
1: जी
0: इसी उम्मीद के साथ, इसी सकारात्मक सोच और इसी अनंत संभावनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं, पर जाने से पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण अनुकूल त्योहार को लेकर। तो अंजलि, हमारे त्योहार तभी वास्तव में खुशियों के त्योहार बन सकते हैं जब उनके कारण किसी के स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे और प्रकृति पर भी अनावश्यक बोझ न पड़े। इसलिए स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण अनुकूल त्योहार आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, त्योहारों के दौरान हम देखते हैं कि घरों की सफाई, सजावट, पकवान और मेहमानों का आना जाना बढ़ जाता है। श्रोता साथियों, इन सब के बीच हम कई बार अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। त्योहारों में तरह तरह की मिठाइयाँ, तले हुए खाद्य पदार्थ और अधिक मसालेदार भोजन की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि त्योहार की खुशी में भोजन की मात्रा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना भी जरूरी है। घर पर बने ताजे और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। फल, हरी सब्जियां, दालें, अनाज और पर्याप्त पानी हमारे भोजन का हिस्सा होना चाहिए। मिठाइयों और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में करना बेहतर है। बच्चों को भी श्रोता साथियों अधिक मीठे और पैकेज वाले खाद्य पदार्थों से बचने की आदत डालनी चाहिए। त्योहार खुशी बांटने का अवसर है, इसलिए मिठाई बांटने के साथ स्वास्थ्य की चिंता करना भी हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि त्योहार से पहले घर और आसपास सफाई की जाती है, लेकिन सफाई केवल घर के अंदर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। गली मोहल्ले, सार्वजनिक स्थान और जल स्रोतों को भी साफ रखने होंगे। हम देखते हैं कि कूड़ा कचरा खुले में फेंकने से मच्छरों और अन्य कीट पनप सकते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए साथियों, त्योहारों के दौरान कचरे को निर्धारित स्थान पर डालना चाहिए और गीले तथा सूखे कचरे को अलग अलग रखने की आदत भी अपनानी होगी। हम देखते हैं कि साफ वातावरण स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी है। अगर हमारा घर साफ है लेकिन उसके आसपास गंदगी है तो हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हम कोई भी त्योहार मनाएं, हम पटाखे तो जलाते ही हैं। श्रोता साथियों, पटाखों का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ त्योहार जैसा कि हम सभी जानते हैं उसमें पटाखे चलाने की परंपरा है। पटाखे से निकलने वाला धुआं और शोर वातावरण को प्रभावित कर सकता है। इससे वायु की गुणवत्ता खराब होती है और तेज आवाज बच्चों और बुजुर्गों और पशु पक्षियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए त्योहारों पर पटाखों के स्थान पर हमें कई अलग चीजों को काम में लेने की जरूरत है ताकि हम हमारे त्योहार को अच्छे से मना पाए। इसी के साथ हम जहाँ पे भी पटाखे चला रहे हैं वहाँ के स्थानीय नियम और सुरक्षित तरीके की जो चीजें हैं उसका पालन करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी वजह से किसी और व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जागृति जी, त्योहार की खुशी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा आनंद किसी दूसरे के लिए परेशानी न बने।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ त्योहारों में सजावट का विशेष महत्व होता है। हम देखते हैं कि आज बाजार में प्लास्टिक, थर्मोकोल और कई सारी सजावटी वस्तुएं मिल रही है जिन्हें इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। इससे कचरे की मात्रा बढ़ती है और पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। इसकी बजाय हम मिट्टी के दिए, कपड़े की सजावट, कागज, फूल पत्तियां, लकड़ी और पुनः उपयोग की जा सकने वाली सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में पहले से मौजूद सजावटी सामान को दोबारा इस्तेमाल करना भी पर्यावरण संरक्षण का बहुत अच्छा तरीका है। श्रोताओं, प्राकृतिक सजावट न केवल सुंदर लगती है बल्कि हमारे त्योहारों को हमारी परंपराओं से भी जोड़ती है।
1: जी हाँ जागृति जी, त्योहारों के दौरान हम देखते हैं कि बाजारों में खरीदी बढ़ जाती है। सामान लेते समय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम करना चाहिए। कपड़े और जूट के थैले साथ लेकर बाजार जाना एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदत है। एक बार श्रोता साथियों, इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक प्लेट, गिलास और चम्मच की जगह हमें स्टील, कांच और अन्य उपयोग योग्य जो बर्तन होते हैं जागृति जी, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, कुछ त्योहार और धार्मिक आयोजनों में पानी का उपयोग और अधिक होता है। हमें समझना होगा कि पानी प्रकृति का अनमोल संसाधन है। त्योहार मनाते समय पानी की बर्बादी से बचना चाहिए। पूजा और सफाई के दौरान जरूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करना है। जल स्रोत में ऐसी सामग्री न डालें जिससे पानी प्रदूषित हो। नदियां, तालाब और कुएं की स्वच्छता हमें बनाए रखनी है। साथ ही हमारी जिम्मेदारी कि जल है तो जीवन है और स्वच्छ जल है तो स्वस्थ जीवन है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण अनुकूल त्योहार हम मना सकते हैं, जिसमें हमने ढेर सारी बातों को जाना। यही बात करें मूर्ति विसर्जन और पर्यावरण की, तो श्रोता साथियों, त्योहार में मूर्ति विसर्जन हमारी आस्था और परंपरा का हिस्सा है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विसर्जन से जल स्रोत प्रदूषित न हो। प्राकृतिक मिट्टी से बनी मूर्तियों को प्राथमिकता देना और प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर विसर्जित करना पर्यावरण के लिए बेहतर कदम हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: फूल माला, प्लास्टिक कपड़ा और अन्य जो पूजा सामग्री है उसको जल में डालने के बजाय हमें उचित तरीके से अलग करना चाहिए। आस्था और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, सही तरीके अपनाकर हम दोनों का सम्मान कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हम भोजन की बर्बादी को किस तरह से रोक सकते हैं इसको लेकर बात करें तो त्योहारों में घरों और सामुदायिक कार्यक्रमों में बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है। कई बार जरूरत से अधिक भोजन बनने के कारण वो बर्बाद हो जाता है। इसीलिए भोजन बनाते समय श्रोताओं परिवार की आवश्यकता का अनुमान लगाना होगा। अगर भोजन बच जाए तो उसे सुरक्षित तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा। एक तरफ जब बहुत से लोग भोजन की कमी का सामना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भोजन की बर्बादी करना उचित नहीं है। भोजन का सम्मान करना भी सामाजिक जिम्मेदारी है। साथ ही बच्चे हमारे समाज का भविष्य है, त्योहार उनके लिए सीखने का भी अवसर है। हम देखते हैं अंजलि कि माता पिता और शिक्षक बच्चों को समझा सकते हैं कि त्योहार केवल नए कपड़े पहनने और मिठाई खाने का नाम नहीं है, बल्कि बच्चों को पौधे लगाने, कचरा अलग करने, पानी बचाने, पशु पक्षियों का ध्यान रखने और स्वच्छता बनाए रखने जैसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। अगर बचपन से ही श्रोताओं बच्चों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित होगी तो भविष्य में भी पर्यावरण के जिम्मेदार नागरिक हम बन सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, त्योहारों की तेज आवाज और आतिशबाजी से पशु पक्षी घबरा सकते हैं, इसलिए श्रोता साथियों, त्योहार मनाते समय उनके प्रति संवेदनशीलता रखना जरूरी है। गर्मी या अन्य मौसम के अनुसार घर के बाहर पक्षियों के लिए पानी रखना, जरूरतमंद पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करना और उन्हें परेशान न करना भी हमारी जिम्मेदारी है। प्रकृति केवल पेड़ पौधे का नाम नहीं है, इसमें पशु पक्षी और सभी जीव शामिल होते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि त्योहारों में देर रात तक जागना, भोजन के समय में बदलाव और शारीरिक गतिविधियां कम होना भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए त्योहारों के बीच में पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित शारीरिक गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए। त्योहार की व्यस्तता में यदि हम अपने शरीर और मन को थोड़ा आराम देंगे तो त्योहारों का आनंद और भी बेहतर तरीके से ले पाएंगे।
1: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि पर्यावरण अनुकूल त्योहार का एक और महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देना है। मिट्टी के दिए, स्थानीय हस्तशिल्प, हाथ से बनी सजावटी वस्तु और स्थानीय उत्पाद खरीदने से स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यवसायों को भी सहयोग मिलता है। जब हम स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं तो एक तरफ अपनी संस्कृति और कला को बढ़ावा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने आसपास के लोगों की आजीविका में भी हम योगदान देते हैं। हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है श्रोताओं, इसमें हर व्यक्ति की भूमिका है। विद्यालय हो, परिवार हो, पंचायत, बाजार, सामाजिक संस्थाएं और स्थानीय समुदाय मिलकर पर्यावरण अनुकूल त्योहारों की दिशा में काम कर सकते हैं। गाँव में ग्राम सभा के माध्यम से भी लोगों को स्वच्छता, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: सामुदायिक रेडियो भी इस जागरूकता को घर घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब पूरा समुदाय मिलकर एक संकल्प लेता है तो छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव में बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज हमें त्योहारों को केवल परंपरा के रूप में नहीं बल्कि जिम्मेदारी के अवसर के रूप में देखना होगा।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा त्योहार जिसमें घर रोशन हो लेकिन सड़क पर कचरा न फैले, पूजा हो लेकिन जल प्रदूषित न हो, मिठाई बने लेकिन भोजन बर्बाद न हो, खुशी मनाई जाए लेकिन किसी के स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे, यही हमारे त्योहारों की सुंदर तस्वीर हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति हमारी जरूरतें पूरी करती है लेकिन हमारी लापरवाही का बोझ अनंत समय तक नहीं उठा सकती।
1: बिल्कुल,
0: त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है और पर्यावरण हमारा जीवन का आधार, इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाना ही हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जागृति जी, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ वातावरण और खुशहाल समाज, यही त्योहारों की वास्तविक खुशी है। इसलिए इस त्योहार को मनाते हुए हम एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, पानी बचाएंगे, प्लास्टिक कम करेंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे, पशु पक्षियों का ध्यान रखेंगे और प्रकृति के साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे। क्योंकि जब हमारी खुशियों में प्रकृति की मुस्कान शामिल होगी तभी त्योहार सच में त्योहार बनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: दिए जले तो रोशनी घर तक पहुँचे, खुशियाँ बटे तो हर दिल तक पहुँचे, त्योहार मनाए तो ऐसे मनाएं हम कि जहां स्वास्थ्य भी बचे और प्रकृति भी सजी हुई रहे।
1: बिल्कुल अंजलि, यही जागरूकता है और यही जिम्मेदारी है और यही सच्चे स्वराज की दिशा में हमारा एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: बिल्कुल,
1: इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं श्रोता साथियों, क्योंकि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बातें रही स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण अनुकूल त्योहार को लेकर, ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागो रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है जंगल से जुड़ा आदिवासी पारंपरिक ज्ञान, जिसके स्वास्थ्य लाभ क्या है और किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे हमारी संस्कृति जो है वो हमें प्रकृति और स्वास्थ्य तीनों से जोड़ती है। आदिवासी समाज जो है वो सदियों से जंगल के साथ मिलकर जीवन जिताया है।
0: बिल्कुल,
1: उनके लिए जंगल मनीषा केवल लकड़ी, फल या ईंधन का स्रोत नहीं है बल्कि एक जीवन साथी है। जंगल उन्हें भोजन देता है, औषधियाँ देता है, स्वच्छ हवा देता है और स्वस्थ जीवन जीने की सीख भी देता है। आधुनिक विज्ञान आज जिन बातों पर शोध कर रहा है उनमें से कई बातें आदिवासी समुदाय वर्षों से अपने अनुभव के आधार पर अपनाते आए हैं। तो आज हम जानेंगे जंगल से जुड़ा यह पारंपरिक ज्ञान हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम की शुरुआत में हम गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विशेष रीति रूबरू करा ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं जंगल से जुड़ा आदिवासी पारंपरिक ज्ञान हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभकारी हो सकता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आदिवासी समाज का जीवन जंगल से शुरू होकर जंगल पर निर्भर करता है। उनका भोजन, आवास, वस्त्र, औषधि, पशुपालन, आजीविका का मुख्य साधन है वो जंगल है। वे जंगल से उतना ही लेते हैं श्रोता साथियों जितनी आवश्यकता उन्हें होती है, और बदले में वे जंगल की रक्षा करते हैं। श्रोता साथियों, यह सोच स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वस्थ जंगल ही स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और औषधीय पौधों का स्रोत है। यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे अंजलि जी, तभी हम देखते हैं कि मानव जीवन है वो सुरक्षित रहेगा।
1: जी हाँ, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आदिवासी समाज का जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। वे मौसम के अनुसार भोजन बदलते हैं, स्थानीय फल फूल और कंदमूल खाते हैं, प्राकृतिक जल स्रोतों का उपयोग करते हैं और शारीरिक श्रम को जीवन का हिस्सा मानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसी कारण मनीषा उनके जीवन में प्रकृति और स्वास्थ्य का संतुलन बना रहता है। वे जानते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए दवा से पहले सही भोजन, स्वच्छ वातावरण और संतुलित जीवन शैली जरूरी है। जंगल अनेक प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ का खजाना है। महुआ के फूल, तेंदू, जामुन, बेर, आंवला, बेल, सीताफल, इमली, शहद, बांस की कोपले, अलग अलग प्रकार की पत्तेदार सब्जियां और कंदमूल शरीर को आवश्यक पोषक प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ये खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जिससे शरीर मजबूत बनता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आदिवासी समुदाय विभिन्न औषधियों की पहचान और उनके उपयोग में अत्यधिक दक्ष होते हैं। वे मौसम, पौधों की आयु, पत्तियां, जड़ी और छाल और उनके गुणों से अच्छी तरह से परिचित होते हैं। उनके अनुसार किसी भी जड़ी बूटी का सही समय पर संग्रहण, उचित मात्रा में उपयोग ही प्रभाव को बढ़ाता है। यह ज्ञान श्रोता साथियों पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ता रहता है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि आदिवासी समाज सामान्य बीमारियों का उपचार जंगल से मिलने वाली जड़ी बूटियों से ही करते हैं। बुखार के लिए कुछ विशेष पौधों की पत्तियों का काढ़ा वे बनाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि सर्दी खांसी में तुलसी, अदरक, काली मिर्च वनस्पतियों का उपयोग वे करते हैं। घाव भरने के लिए श्रोता साथियों औषधीय पत्तियों का लेप वे बनाते हैं। पेट दर्द में श्रोता साथियों कड़वी जड़ों या प्राकृतिक बीजों का उपयोग वे करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही अंजलि जी हम देखते हैं कि त्वचा के रोगों में नीम, करंज या अन्य औषधीय पौधों का भी उपयोग करते हैं। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि इन उपचारों में प्राकृतिक तत्वों का उपयोग होने से कई बार दुष्प्रभाव कम देखने को मिलते हैं, लेकिन श्रोता साथियों गंभीर बीमारी से परीक्षित होने पर हमें डॉक्टर से सलाह लेकर उनके अनुसार हमें अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही कहना चाहेंगे कि आदिवासी समुदाय अनेक औषधीय पौधों की पहचान रखते हैं।
0: जी हाँ,
1: गिलोय, नीम, तुलसी, अर्जुन, हरड़, बहेड़ा, आंवला, अश्वगंधा, काल मेघ, अन्य जड़ी बूटियों का उपयोग बुखार, सर्दी खांसी, पेट दर्द, घाव, त्वचा संबंधित समस्याओं में करते आए हैं। श्रोता साथियों, आदिवासी समाज हर मौसम के अनुसार खान पान बदलता है। गर्मी में ठंडक देने वाले फल और पेय, वर्षा ऋतु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ और सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले अनाज और बीजों का सेवन किया जाता है। इससे शरीर मौसम के बदलाव के अनुसार स्वयं को बेहतर ढंग से तैयार कर लेते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जंगल से लकड़ी लाना, खेती करना, पैदल चलना, पशुपालन और अन्य दैनिक कार्य आदिवासी जीवन का हिस्सा है।
0: जी हाँ,
1: इसमें अलग से जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका पूरा दिन सक्रिय रहता है। यही कारण है कि नियमित शारीरिक गतिविधि उनके स्वास्थ्य का मजबूत आधार बनती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से जंगल से जुड़ा आदिवासी पारंपरिक ज्ञान को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं, और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही आपको कहना चाहेंगे कि जंगल का स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा और हरियाली मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक होती है।
1: हाँ।
0: प्रकृति के बीच रहने से श्रोता साथियों मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आदिवासी भोजन में मोटे अनाज, स्थानीय दालें, मौसमी सब्जियां और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ अधिक होते हैं। कम तेल, कम मसाले और ताजा भोजन पाचन को बेहतर बनाता है और
1: हाँ।
0: जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियों का खतरा भी कम करता है।
1: बिल्कुल।
0: आदिवासी समाज वर्षों से प्राकृतिक जल स्रोतों की रक्षा करता आया है। स्वच्छ पानी का महत्व वे भली भांति समझते हैं। जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल का संरक्षण और पानी का सीमित उपयोग उनके जीवन का हिस्सा है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वच्छ जल अच्छे स्वास्थ्य की पहली शर्त है। इसी के साथ आदिवासी समुदाय में सामूहिक जीवन की परंपरा मजबूत होती है। मनीषा, खुशी और दुख दोनों में पूरा समुदाय साथ खड़ा होता है।
1: हाँ।
0: यह सामाजिक सहयोग तनाव कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जंगल वो प्राकृतिक रूप से वायु को शुद्ध करते हैं। आदिवासी समाज जंगलों की सफाई बनाए रखने में, पेड़ों की अनावश्यक कटाई, साथ ही आग से बचाने में विशेष ध्यान रखते हैं। इससे पर्यावरण संतुलित रहता है और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। साथ ही श्रोता साथियों, प्राकृतिक वातावरण मन को शांति देता है। आदिवासी समाज में संगीत, लोक नृत्य, सामूहिक जीवन, त्योहार और प्रकृति के साथ समय बिताने की परंपरा है, वो हमारे तनाव को कम करने में मदद करती है। आज वैज्ञानिक भी श्रोता साथियों यह मानते हैं कि हरियाली और प्रकृति मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती है।
0: जी हाँ मनीषा, यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो औषधीय पौधे, स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और पौष्टिक भोजन भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जंगल बचाना केवल पर्यावरण बचाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है।
1: हाँ।
0: स्थानीय और मौसमी भोजन को हमें अपनाना है। इसी के साथ हमें नियमित शारीरिक श्रम करना है, जंगलों और जैव विविधता की रक्षा करनी है, पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करना है और इसी के साथ बुजुर्गों से स्थानीय औषधि और खाद्य पदार्थों की जानकारी हमें लेनी है।
1: जी बिल्कुल,
0: प्रकृति हमें हर दिन यह सिखाती है श्रोता साथियों कि स्वस्थ जीवन के लिए संतुलन जरूरी है। आदिवासी समाज का पारंपरिक ज्ञान हमें बताता है कि यदि हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज तीनों मजबूत होगा।
1: जी हाँ।
0: आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक अनुभव एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि यही समझ के साथ एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। इसलिए किसी भी समाज की सबसे बड़ी संपत्ति केवल उसकी इमारतें या तकनीक नहीं होती बल्कि उनका अनुभव और जीवन जीने की समझ होती है।
1: जी हाँ।
0: आदिवासी समुदाय श्रोता साथियों जंगलों के बीच रहते हुए ये साबित करते हैं कि स्वास्थ्य केवल अस्पतालों और दवाइयों से नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित संबंध, पौष्टिक भोजन और सामूहिक जीवन और नियमित श्रम और पर्यावरण के सम्मान से मिलता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस अमूल्य पारंपरिक ज्ञान को केवल अतीत की विरासत न माने बल्कि वर्तमान भविष्य की आवश्यकता के रूप में देखें।
1: जी
0: जब
1: हाँ।
0: हम जंगलों की रक्षा करते हैं, स्थानीय खाद्य पदार्थों को अपनाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हैं और आदिवासी समुदाय के अनुभवों को सीखेंगे, तब हम केवल अपनी सेहत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित, स्वस्थ और संतुलित जीवन की नींव रखेंगे। प्रकृति के साथ जुड़ाव ही मनीषा स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आज की पीढ़ी आदिवासी जीवन से कई महत्वपूर्ण बातें सीख सकती हैं। प्राकृतिक भोजन को अपनाना, पर्यावरण की रक्षा करना, नियमित शारीरिक श्रम को अपनाना, साथ ही स्वच्छता बनाए रखना, पेड़ों का सम्मान करना और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जंगल से जुड़ा आदिवासी पारंपरिक ज्ञान केवल इतिहास ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की एक जीवंत प्रेरणा भी है। यह हमें सिखाता है कि एक अच्छा स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बल्कि प्रकृति, संतुलित भोजन, नियमित श्रम, स्वच्छ पर्यावरण और सामुदायिक सहयोग से प्राप्त होता है। यदि हम इस ज्ञान का सम्मान करते हुए श्रोता साथियों जंगलों का संरक्षण करें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जिए, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि हम स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य छोड़कर जाएंगे।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने श्रोता साथियों को ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ।
0: जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में जो बातचीत रही, जो गीत संगीत रहे, वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की, आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों,
1: अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों, बप्पा की विदाई ऐसी हो जिसमें आस्था की रोशनी हो, स्वच्छता की जिम्मेदारी हो और प्रकृति के प्रति सच्ची संवेदनशीलता हो।
1: जी हाँ, आप सभी को वागर रेडियो परिवार की ओर से गणेश विसर्जन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
2: स्वीकार कीजिएगा दोस्तों हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। लेकर हाजिर हो चुके हैं जागृति जी और कशिश कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं बप्पा की विदाई प्रकृति की सुरक्षा के साथ कैसे हो हमारा गणेश विसर्जन।
1: बिल्कुल, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल दिया, इन जयकारों के साथ गणेश उत्सव हमारे घरों मोहल्लों और गांवों में खुशियां लेकर आता है।
2: बिल्कुल,
1: कहीं ढोल की थाप सुनाई देती है, कहीं आरती की गुंज, तो कहीं बच्चे और युवा मिलकर सजावट करते दिखाई देते हैं। हम देखते हैं अंजलि और कशिश कि कुछ दिनों तक ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण बप्पा की भक्ति में रंग गया हो।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन उत्सव का एक भावुक पड़ाव वो भी आता है जब हम बप्पा को विदाई देते हैं और वो दिन आज है। आंखों में भाव होते हैं, मन में भक्ति होती है और जुबान पर एक ही बात होती है कि बप्पा अगले बरस फिर आना। लेकिन आज इसी विदाई के साथ हमें एक और संकल्प छोड़ना होगा, बप्पा की विदाई श्रद्धा के साथ हो और प्रकृति की सुरक्षा के साथ भी हो।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज हम बात करेंगे कि बप्पा की विदाई हमारे लिए आस्था का विषय है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमारी विदाई का तरीका प्रकृति के लिए कैसा होना चाहिए। क्या श्रोता साथियों, हमारा विसर्जन जल मिट्टी और जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए बिना हो सकता है? क्या हम अपनी परंपरा को निभाते हुए पर्यावरण की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इस विषय पर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी।
2: बिल्कुल,
0: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
2: जी बिल्कुल, तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: श्रोता साथियों, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आना। आज हम देख रहे हैं कि हम सभी के आसपास हमें यही आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है श्रोता साथियों कि जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया है उसी प्रकृति को हम नुकसान भी पहुंचा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम बप्पा को विदाई तो दे रहे हैं, क्या यह विदाई सच में पूरी हो रही है? जैसा कि श्रोता साथियों हम सभी जानते हैं कि गणेश उत्सव हमें केवल भक्ति नहीं सिखाता, बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी, स्वच्छता, संयम और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश भी देता है।
1: बिल्कुल,
0: आज के हमारे सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम में हम यही बात कर रहे हैं कि बप्पा की विदाई प्रकृति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर हम कैसे करेंगे।
1: जी हाँ कशिश, जैसा कि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है, किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। श्रोताओं, गणेश उत्सव केवल पूजा का अवसर नहीं है, ये लोगों को जोड़ने वाला पर्व भी है। अंजलि, हम देखते हैं कि बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और हर कोई इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कई सुंदर झांकियां सजती है, कई भजन कीर्तन होते हैं, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और कई सामूहिक आरती होती है। इस उत्सव की सबसे बड़ी खूबसूरती यही श्रोताओं की, ये लोगों को एक साथ लाता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन हर उत्सव के साथ हमारी जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। अगर हम प्रकृति से लेते हैं तो प्रकृति को लूटाना भी हमारा कर्तव्य है। हम जल का उपयोग करते हैं, हवा में सांस लेते हैं, पेड़ों की छांव लेते हैं, इसीलिए श्रोताओं हमारे धार्मिक उत्सव भी ऐसे हो जिनसे प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचे।
2: बिल्कुल जागृति जी, तो कैसी हो पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमा? तो श्रोता साथियों, सबसे पहला कदम मूर्ति चुनते समय ही उठाया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
2: जहां संभव हो प्राकृतिक मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा को प्राथमिकता दें। ऐसी प्रतिमा पानी में अपेक्षाकृत आसानी से घुल सकती है और प्रतिमा खरीदते समय यह भी पूछ सकते हैं हम कि मूर्ति किस सामग्री से बनी है, इसमें कौन से रंग इस्तेमाल किए गए हैं, क्या यह प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनी है, क्या मूर्ति के साथ प्लास्टिक या थर्माकोल की अनावश्यक सजावट तो नहीं है। क्योंकि हमारी छोटी सी जागरूकता कशिश और जागृति जी मूर्ति बनाने वाले कारीगरों को भी पर्यावरण अनुकूल प्रतिमाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।
0: बिल्कुल,
2: हम देखते हैं कि हमारे गांवों और शहरों में तालाब, नदियां और कई अन्य जल स्रोत केवल धार्मिक आस्था से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
1: जी हाँ,
2: इन्हीं जल स्रोतों से कई जगह पशु पक्षी पानी पीते हैं, खेती और दूसरे कामों में पानी का उपयोग होता है और अनेक जलीय जीवों का जीवन इसी पर निर्भर करता है।
1: जी हाँ,
2: इसलिए श्रोता साथियों, विसर्जन करते समय स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित कृत्रिम विसर्जन कुंड या निर्धारित स्थान का उपयोग करना बहुत जरूरी है। यदि आपके क्षेत्र में प्रशासन ने विसर्जन के लिए कोई विशेष व्यवस्था की है तो उसका पालन करें, क्योंकि आस्था हमारी है लेकिन जल स्रोत सबके हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणेश उत्सव भारतीय संस्कृति और आस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है। कई परिवार और समुदाय गणेश प्रतिमा की स्थापना तो करते हैं और कुछ दिनों तक पूजा अर्चना के बाद श्रद्धा के साथ उनका विसर्जन भी करते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथियों, विसर्जन का भाव केवल प्रतिमा को पानी में प्रभावित करना नहीं है, इसके पीछे एक सुंदर सांस्कृतिक विचार भी है कि आना और जाना प्रकृति का नियम है। मिट्टी से बनी प्रतिमा आती है और अंत में उसी प्रकृति में लौट जाती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ये हमें याद दिलाता है कि मनुष्य भी प्रकृति का एक हिस्सा है, प्रकृति से अलग नहीं। लेकिन आधुनिक समय में विसर्जन के तरीके बदलने के कारण अंजलि जी और जागृति जी, पर्यावरण से जुड़े सवाल भी सामने आए हैं।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि बड़ी संख्या में प्रतिमाएं बढ़ रही है, सजावटी सामग्री, प्लास्टर जैसी सामग्री, रासायनिक रंग, प्लास्टिक और अन्य कचरा जो है वो जल स्रोतों तक पहुंच सकता है। इसलिए आज जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हमारी आस्था भी बनी रहे और प्रकृति भी सुरक्षित रहे।
1: जी हाँ कशिश, और जैसा कि हम गणेश विसर्जन को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा गणेश विसर्जन हो, तो श्रोता साथियों, विसर्जन केवल मूर्ति को पानी में प्रवाहित करने की परंपरा नहीं है।
0: जी हाँ,
1: इसके पीछे एक भाव है। हम मिट्टी से बनी प्रतिमा को श्रद्धा के साथ स्थापित करते हैं और फिर उसी पंच तत्व में लुटाते हैं। यही हमें जीवन का एक सुंदर संदेश देती है, जो प्रकृति से आया है वह प्रकृति में ही लूटता है। लेकिन अंजलि और कशिश, जब मूर्ति बनाने में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल होता है जो पानी में आसानी से घुलती नहीं, या सजावट की सामग्री जल स्रोतों में चली जाती है, तो इसका असर हम देखते हैं कि पानी और जलीय जीवन पर पड़ जाता है। इसीलिए श्रोताओं, आज जरूरत है कि हम परंपरा की भावनाओं को बनाए रखते हुए विसर्जन के तरीकों को और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाए।
2: बिल्कुल जागृति जी, आजकल हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे घर घर मूर्ति बिठा बैठाने की जिद करते रहते हैं कि हमें भी गणेश जी चाहिए। तो हमें चाहिए कि कम से कम हम हमारे घर पर बच्चों को बताएं कि हम किस तरीके से गणेश जी की मूर्ति बनाएं, क्योंकि छोटी मिट्टी की जो प्रतिमा है वो हम हमारे घर पर भी विसर्जित कर सकते हैं। मूर्ति के पानी में घुलने के बाद उस मिट्टी का उपयोग हम पौधे की मिट्टी में मिलाने जैसे तरीकों में काम में ले सकते हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए कि उसमें ऐसा रसायन और सामग्री न हो जो पौधे या मिट्टी को नुकसान पहुंचाए। इस तरह बप्पा की प्रतिमा वापस प्रकृति का हिस्सा बन सकती है और यह तरीका बच्चों के लिए भी एक सुंदर सीख बन सकता है।
0: बिल्कुल,
2: क्योंकि जिस प्रकृति से हमें जीवन मिलता है उसकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि विसर्जन के समय केवल मूर्ति ही पानी में नहीं जाती है, कई बार फूल, माला, कपड़ा, सजावटी सामग्री, दूसरी चीजें भी नदी या तालाब में डाल दी जाती है। यहीं से हमें अपनी आदत बदलनी होगी। फूल मालाओं को पानी में डालने के बजाय अलग एकत्र किया जा सकता है, जहां स्थानीय व्यवस्था उपलब्ध हो वहां इन्हें कंपोस्टिंग या जैविक खाद के उपयोग में लाया जा सकता है। प्लास्टिक की थैलियां, पैकेजिंग, थर्माकोल और अन्य गैर जैविक सामग्री को जल स्रोत में बिल्कुल न डालें। एक आसान सा नियम याद रखें कि पूजा की सामग्री श्रद्धा से संभालें लेकिन कचरे को जल स्रोत में न बहाएं।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है गणेश विसर्जन को लेकर, तो ये बातें निरंतर बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
2: बिल्कुल। जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गणेश विसर्जन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं साथियों, और गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि मिट्टी की प्रतिमा किस प्रकार से प्रकृति के करीब एक विकल्प हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि गणेश प्रतिमा के निर्माण में सामग्री का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
1: बिल्कुल,
0: परंपरागत रूप से मिट्टी से बनी प्रतिमाएं प्रकृति के अधिक करीब मानी जाती है, इसलिए गणेश उत्सव मनाते समय ऐसी प्रतिमाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है जो पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक हो। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: जी जी,
0: आज के युवा सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं और अपने मोहल्ले या गांव में इको फ्रेंडली गणेश उत्सव की पहल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: किसी एक व्यक्ति का छोटा सा कदम साथियों शायद बहुत बड़ा बदलाव न दिखाई दे, लेकिन जब पूरा समुदाय उसी दिशा में आगे बढ़ता है तो परिणाम बड़ा जरूर होता है।
1: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि विसर्जन के लिए सीधे नदी, तालाब या अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों में जाने के बजाय स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाए गए कृत्रिम विसर्जन कुंड का उपयोग करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है। विसर्जन के बाद मूर्ति के अवशेषों और सजावटों की सामग्री को अलग अलग एकत्र करके उचित तरीके से निपटाया जा सकता है। श्रोताओं, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि पूजा के बाद जल स्रोत पहले से ज्यादा साफ रहे, गंदे नहीं। हम देखते हैं अंजलि और कशिश की गणेश पूजा में फूल, माला, नारियल, पत्तियां और अन्य पूजा सामग्री का उपयोग होता है। अक्सर पूजा के बाद ये सामग्री नदी या तालाब में डाल दी जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। श्रोताओं, फूलों को जल में डालने के बजाय अलग से एकत्र किया जा सकता है, उनसे खाद या अन्य उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है, साथ ही पूजा सामग्री के लिए अलग पात्र रखा जा सकता है। ये छोटा सा जो प्रयास है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है।
2: बिल्कुल जागृति जी, इस बार हम बप्पा की विदाई पर एक नया संकल्प भी जोड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: एक गणेश प्रतिमा एक पौधा, क्योंकि श्रोता साथियों परिवार अपने घर, खेत, आंगन या उपलब्ध स्थान के अनुसार एक पौधा लगाने का संकल्प ले सकता है।
1: बिल्कुल,
2: बप्पा की विदाई के बाद उस पौधे की देखभाल करना पूरे परिवार की जिम्मेदारी बने। इससे त्योहार केवल कुछ दिनों की खुशी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों तक प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ रहेगा।
1: बिल्कुल,
2: पर्यावरण अनुकूल गणेश विसर्जन केवल एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरे समुदाय की भागीदारी से इसका प्रभाव भी बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल,
2: गांव की पंचायत, युवा समूह, महिला समूह, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय नागरिक मिलकर निर्धारित विसर्जन स्थल की जानकारी दे सकते हैं, स्वच्छता व्यवस्था बना सकते हैं, पूजा सामग्री एकत्र करने की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसा कि जागृति जी आपने अभी बताया, लोगों को मिट्टी की प्रतिमा के बारे में जागरूक कर सकते हैं और विसर्जन के बाद सफाई अभियान चला सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: बच्चों और युवाओं को जागरूकता गतिविधियों से जोड़ सकते हैं, ताकि जागृति जी और कशिश एक साथ जब पूरा समुदाय कदम उठाएगा तो त्योहारों की खुशी भी बढ़ती है और जिम्मेदारी भी साझा हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ अंजलि जी, साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उत्सव की खुशी हो लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। दोस्तों, गणेश उत्सव खुशी और उत्साह का पर्व होता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में ढोल, संगीत और सजावट उत्सव का हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्सव का आनंद दूसरे लोगों के लिए परेशानी न बन जाए। ध्वनि का ज्यादा स्तर बुजुर्गों, छोटे बच्चों, बीमार लोगों और पशु पक्षियों को परेशान कर सकता है। इसलिए उत्सव में उत्साह के साथ साथ संवेदनशीलता भी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल,
0: हमारी खुशी तब भी सुंदर होगी दोस्तों जब उससे किसी दूसरे को परेशानी न हो।
1: जी हाँ,
0: इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि उत्सव की खुशी बनाकर रखनी है लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं।
1: जी हाँ, और हम कह सकते हैं कशिश की गणेश उत्सव में सजावट करते समय प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की फूलों और एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सामग्री से हमें बचना होगा। इसके स्थान पर श्रोता साथी हम कपड़े, कागज, प्राकृतिक पत्तियां, मिट्टी और पुनः उपयोग की जा सकने वाली सामग्री से सजावट भी कर सकते हैं।
0: जी जी,
1: इससे उत्सव की सुंदरता भी बनी रहती है श्रोताओं, और कचरा भी कम होता है। याद रखिए, सजावट ऐसी हो जो उत्सव के बाद कचरे का पहाड़ न बनाए।
0: बिल्कुल,
1: साथ में हम कहना चाहेंगे कि गणेश उत्सव में संगीत और भक्ति का अपना आनंद है, लेकिन हमें ध्वनि की मर्यादा का भी ध्यान रखना होगा। अंजलि, हम देखते हैं कि तेज आवाजों से बुजुर्ग, छोटे बच्चे, बीमार लोगों और पशु पक्षियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए श्रोताओं उत्सव में संगीत हो, भजन हो, ढोल नगाड़े हो, लेकिन निर्धारित नियमों और समय का पालन करते हुए, क्योंकि भक्ति की सुंदरता केवल आवाज की ऊंचाई में नहीं बल्कि भावना की गहराई में होती है।
2: बिल्कुल जागृति जी, कभी कभी हमें लगता है कि पर्यावरण की चिंता करने का मतलब त्योहार की परंपरा को बदल देना है।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन श्रोता साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंपराओं का उद्देश्य हमें समाज और प्रकृति से जोड़ना है। समय के साथ हमारी कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव आ सकता है, लेकिन आस्था और भावना वही रह सकती है। हम बप्पा की पूजा भी कर सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं, प्रसाद भी बांट सकते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां भी मना सकते हैं और साथ ही अपने जल स्रोतों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
2: बस जरूरत केवल इतनी है कि उत्सव मनाते समय हम एक कदम आगे सोचें, क्योंकि गणेश उत्सव हमें बहुत सुंदर संदेश देता है, शुभ शुरुआत बुद्धि विवेक और मंगल की। इसलिए पप्पा की विधाई भी ऐसे ही विवेक और जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
2: जब हम गणेश जी की प्रतिमा को विदा करते हैं तो हमारे मन में भाव होता है कि पप्पा फिर आएंगे।
0: बिल्कुल,
2: लेकिन जिस नदी तालाब या जल स्रोत के पास हम विसर्जन करते हैं वह हमारे जीवन का हिस्सा रोज बना रहता है।
0: जी हाँ,
2: वहाँ रहने वाले जीव जंतु, उस पानी पर निर्भर लोग और आने वाली पीढ़ियां हमारे आज के फैसलों से प्रभावित होती हैं। इसलिए विसर्जन के समय हमें केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि पप्पा को कैसे विदा करें, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि पप्पा की विदाई के बाद हम अपने आसपास की प्रकृति को किस रूप में छोड़कर जा रहे हैं। अगर पानी साफ है, किनारे स्वच्छ हैं, पूजा सामग्री व्यवस्थित तरीके से रखी गई है, कचरा जल स्रोतों में नहीं गया और लोग पर्यावरण की जिम्मेदारी समझ कर घर लौटे हैं, तो यह भी पप्पा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा का एक रूप है।
0: बिल्कुल,
2: क्योंकि पप्पा हमें बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देने वाले देवता माने जाते हैं, तो क्यों न इस बार उनकी सीख को हम अपने व्यवहार में उतारे।
3: बिल्कुल
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि श्रोता साथियों से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है कि हम प्रकृति को ध्यान में रखते हुए गणेश विसर्जन इस बार कैसे कर सकते हैं।
2: बिल्कुल,
0: तो ये बातें आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और पैरसिक गीत के साथ में।
2: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और हमारी बातें चल रही थी प्रकृति की सुरक्षा को लेकर कि गणेश विसर्जन में प्रकृति की सुरक्षा हमें किस तरह से करनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: गीत से पहले हमारी डीजे और ध्वनि के बजाय भक्ति की आवाज को लेकर बात की थी। यही जानते हैं बच्चों और युवाओं की भूमिका को लेकर। तो अंजलि और कशिश, गणेश उत्सव को पर्यावरण जागरूकता का अवसर भी बनाया जा सकता है। बच्चे पोस्टर बना सकते हैं गणपति बप्पा की यही पुकार, स्वच्छ रहे अपना जल संसार। युवा विसर्जन जल स्तर पर स्वच्छता अभियान चला सकते हैं। स्थानीय समूह लोगों को समझा सकते हैं कि पूजा सामग्री और अन्य कचरे को अलग अलग कैसे रखना चाहिए। गांव में युवा मिलकर एक छोटा सा संदेश अभियान चला सकते हैं, बप्पा को सम्मान, प्रकृति का भी ध्यान। ये सारी चीजें संदेश और अभियान के माध्यम से चल सकती है। और जब युवा आगे आते हैं तो संदेश बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचते भी है। हम देखते हैं कि कभी कभी हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति के प्रयास से क्या ही फर्क पड़ जाएगा।
2: बिल्कुल,
0: लेकिन श्रोताओं, बदलाव हमेशा हर छोटे कदम से ही शुरू होता है। एक परिवार मिट्टी की मूर्ति अपनाता है, दूसरा परिवार प्लास्टिक से दूरी बनाता है, तीसरा परिवार पूजा सामग्री जल में नहीं डालता, कुछ युवा विसर्जन स्थल पर सफाई करते हैं। धीरे धीरे जो छोटे छोटे प्रयास है वो एक बहुत बड़ा बदलाव बन जाते हैं।
2: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें ये नहीं सोचना है श्रोताओं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, हमें तो ये सोचना है कि मैं अपने स्तर पर क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ।
2: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि देखते ही देखते गणेश उत्सव के 10 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला।
1: बिल्कुल,
2: जिस दिन बप्पा हमारे बीच आए थे उस दिन से हर तरफ एक अलग ही उत्साह था।
1: बिल्कुल,
2: घरों और पांडालों में सजावट, आरती और भक्ति का माहौल था। बच्चों के चेहरों पर खुशी थी और हर दिन कुछ नया करने की उत्सुकता भी। इन 10 दिनों में बच्चों ने खूब मस्तियां की, खेल खेले और अलग अलग प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। किसी ने चित्रकला में अपनी कल्पना दिखाई, किसी ने रंगोली में रंग भरे, किसी ने गीत और कविता सुनाई, तो किसी ने नृत्य और फैंसी ड्रेस के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता के दौरान हम देखते थे कि दोस्तों की हंसी मजाक, एक दूसरे की हौसला अफजाई और जीतने की खुशी इन दिनों को और भी खास बना देती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि कहीं आरती में बच्चों की आवाज गूंजती तो कहीं प्रसाद बांटा गया, तो कहीं पांडाल में बच्चों की चहल पहल रही। हर दिन ऐसा लगता था कि जैसे अभी तो उत्सव शुरू ही हुआ है, लेकिन अब अचानक पप्पा की विदाई का समय आ गया। इन 10 दिनों में हम देखते हैं कि कहीं सारी चीजें एकदम से अलग हो गई। ये 10 दिन जो है वो पलक झपकते ही निकल गए।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन इन 10 दिनों की यादें इतनी आसानी से नहीं जाएंगी। बच्चों की मुस्कान, प्रतियोगिताओं की तैयारी, मिली हुई तालियां, दोस्तों के साथ बिताए पल और बप्पा के सामने की गई आरती, ये सभी यादें लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगी।
1: जी हाँ। बिल्कुल,
2: अब विदाई की बेला है, मन में थोड़ी खुशी है और बप्पा अगले साल फिर आएंगे, और थोड़ी उदासी भी है कि रोज होने वाली जो रौनक है अब कुछ समय के लिए थम जाएगी।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथ ही दोस्तों, गणेश विसर्जन को यादगार बनाने का एक और सुंदर तरीका हमारे द्वारा हो सकता है, वो है पौधारोपण। यानी कि अगर किसी मोहल्ले, स्कूल, युवा समूह या संस्था द्वारा गणेश उत्सव मनाया जा रहा है तो विसर्जन के अवसर पर पौधे लगाने का संकल्प भी लिया जा सकता है।
2: बिल्कुल,
1: जैसे कि साथियों, कल्पना कीजिए कि एक तरफ बप्पा की विदाई हो रही है और दूसरी तरफ धरती पर एक नया पौधा लगाया जा रहा है। एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में ये बहुत ही सुंदर पहल हो सकती है कि बप्पा की विदाई धरती को नई जिंदगी। जैसा कि आज के युवा केवल उत्सव मनाने वाले नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखने वाली पीढ़ी है।
2: बिल्कुल,
1: युवा साथी सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल विसर्जन का संदेश दे सकते हैं, अपने दोस्तों और परिवार को समझा सकते हैं, स्थानीय स्तर पर स्वच्छता अभियान चला सकते हैं, विसर्जन के बाद कचरा उठाने में सहयोग कर सकते हैं और सबसे जरूरी खुद उदाहरण बनकर लोगों को दिखा सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि जब कोई युवा खुद सही कदम उठाता है साथियों, तो उनके साथ कई दूसरे युवा भी जुड़ सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि हमारे श्रोता साथियों को हम बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमें आज के दिन में करनी चाहिए, तो श्रोताओं, हम गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, लेकिन इस बार बप्पा को एक संकल्प भी दे सकते हैं।
2: जी,
0: संकल्प है कि मैं जल को गंदा नहीं करूंगी, मैं प्रकृति का सम्मान करूंगी, मैं प्लास्टिक का कम उपयोग करूंगी, मैं पूजा सामग्री को जल स्त्रोत में नहीं डालूंगा या नहीं डालूंगी, मैं अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक करूंगा या करूंगी। क्योंकि भगवान को केवल पूजा की थाली नहीं, हमारी अच्छी सोच और जिम्मेदार व्यवहार भी प्रिय होना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: अंजलि और कशिश, हम देखते हैं कि हमारे गांव में तालाब, कुएं, नदियां और छोटे छोटे जल स्रोत केवल पानी के स्रोत नहीं है, ये हमारे जीवन और हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है।
2: बिल्कुल,
0: इन जल स्रोतों की स्वच्छता पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
0: गणेश विसर्जन के

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम की ओर। जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है और हम बीच बीच में गीत संगीत के माध्यम से मनोरंजन भी कर रहे हैं, यही अब बात आती है विसर्जन में सावधानी और शांति कैसे बनाकर रखें।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, गणेश विसर्जन खुशी और श्रद्धा का अवसर है, इसलिए जरूरी है कि उत्साह के साथ सुरक्षा, अनुशासन और शांति का भी ध्यान रखा जाए। क्योंकि श्रोता साथियों, विसर्जन के दौरान कुछ छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर हम अपने परिवार, बच्चों और पूरे समुदाय को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि जागृति जी और कशिश, विसर्जन के समय हमें प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान का उपयोग करना है, नदी तालाब और अन्य जो जल स्रोत है उनमें किसी भी प्रकार की चीजें नहीं डालनी है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को पानी के किनारे अकेले न जाने दें, उन्हें गहरे पानी में उतरने से रोकें, भीड़ में धक्का मुक्की न करें, सभी लोग अपनी बारी का इंतजार करें और बुजुर्गों और महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। विसर्जन जो यात्रा है उसमें वाहन चलाते समय तेज गति और लापरवाही से बचें, ढोल डीजे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते समय स्थानीय प्रशासन के नियम और निर्धारित समय का पालन करें, रास्ते में कचरा, प्लास्टिक और पूजा सामग्री न फैलाएं, विसर्जन के बाद आसपास की सफाई जरूर करें, पानी में उतरने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, गहरे या तेज बहाव वाले पानी में जाने से बचना चाहिए, अगर मौसम खराब हो तो पानी का बहाव तेज हो सकता है, भीड़ ज्यादा हो तो जल्दबाजी करने के बजाय सुरक्षित समय और व्यवस्था का इंतजार करें, किसी भी विवाद, बहस या धक्का मुक्की की स्थिति में खुद मामला बढ़ाने के बजाय शांत रहें और जिम्मेदार लोगों और प्रशासन की मदद करें। सबसे जरूरी बात कि उत्सव की खुशी किसी दूसरे की परेशानी न बने।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथ ही हमें भक्ति के अर्थ के साथ साथ जिम्मेदारी को समझने की भी जरूरत है।
2: बिल्कुल,
1: जैसे कि साथियों, हम भगवान गणेश जी को बुद्धि और विवेक का प्रतीक मानते हैं, तो अगर हम गणेश उत्सव को मनाते हुए प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें एक बार खुद से सवाल करना होगा।
2: बिल्कुल,
1: कि क्या हमारी भक्ति में विवेक भी शामिल है। भगवान गणेश की पूजा हमें शुभ शुरुआत, बुद्धि और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। इसलिए साथियों, गणेश उत्सव का सबसे सुंदर संदेश शायद यही हो सकता है कि हम पूजा भी करें, उत्सव भी मनाएं और प्रकृति की रक्षा भी करें।
2: बिल्कुल कशिश, हमें ये बात बहुत समझना जरूरी है कि पर्यावरण की चिंता का मतलब परंपराओं को खत्म करना नहीं है। श्रोताओं, हमारी परंपराएं हमारी पहचान है, जरूरत केवल इतनी है अंजलि कि समय के साथ हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें, परंपरा वही रहे, गणेश जी आए, पूजा हो, आरती हो, प्रसाद हो, उत्सव हो और फिर विदाई हो, बस हमारी सोच में एक बात और जुड़ जाए कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा धर्म है।
1: बिल्कुल,
2: यही आधुनिक समय की जिम्मेदार भक्ति है। तो साथियों, इस गणेश विसर्जन पर हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि पप्पा की विदाई धूमधाम से होगी, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर नहीं। हम जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे, पूजा सामग्री को व्यवस्थित तरीके से एकत्र करेंगे, स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित विसर्जन व्यवस्था का पालन करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि गणेश जी आते हैं तो घर में खुशी आती है, उनकी स्थापना हमें शुभ शुरुआत का संदेश देती है और उनकी विदाई हमें याद दिलाती है अंजलि और कशिश के जीवन में हर आगमन के साथ एक विदाई भी जुड़ी हुई है, लेकिन विदाई ऐसी हो जो पीछे कोई दुख न छोड़े। इस बार जब पप्पा को विदा कर रहे हैं श्रोताओं साथियों, तो उनके साथ अपनी एक अच्छी आदत को भी घर लेकर आए, जल बचाने की आदत, प्रकृति को स्वच्छ रखने की आदत, कचरा सही जगह डालने की आदत और सबसे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी समझने की आदत। तो श्रोता साथ, इस बार आप बप्पा से यही कहे कि बप्पा आप अगले बरस फिर आइएगा, हम भी तब तक अपने गांव, अपने शहर और अपनी प्रकृति को और सुंदर बनाएंगे। और जब विदाई के समय आवाज उठे गणपति बप्पा मोरिया, तो उस आवाज में एक और संकल्प शामिल हो, स्वच्छ जल, स्वच्छ प्रकृति, यही हमारी सच्ची भक्ति है।
0: बिल्कुल जागृति जी, गणेश विसर्जन का समय पूरे उत्सव का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण पड़ाव होता है।
1: बिल्कुल,
0: 10 दिनों तक जिस प्रतिमा के सामने परिवार और समुदाय ने पूजा की, आरती की, बच्चों ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और सभी ने मिलजुल कर खुशियां मनाई, उसे पप्पा को विदा करते समय मन में उत्साह भी होता है और भावनाएं भी। ऐसे समय में थोड़ी सी जल्दबाजी या लापरवाही पूरे उत्सव की खुशी को प्रभावित कर सकती है। इसलिए विसर्जन को केवल धार्मिक परंपरा के रूप में नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी और अनुशासन के अवसर के रूप में देखना चाहिए। विसर्जन के दौरान सबसे जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरे लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे। भीड़ में एक दूसरे को रास्ता देना, बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर नजर रखना, किसी को जबरदस्ती पानी में न उतरने देना और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्साह में हम अक्सर अपनी सुरक्षा भूल जाते हैं, लेकिन असली खुशी तब है जब पूरा परिवार और पूरा समुदाय सुरक्षित तरीके से इस अवसर को पूरा करे।
2: बिल्कुल
1: अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से साथियों को ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों, गणेश उत्सव केवल कुछ दिनों का त्योहार नहीं है, ये हमारे लिए एक अवसर है अपनी आस्था को जिम्मेदारी से जोड़ने का।
0: जी जी,
1: बप्पा की विदाई के समय हमारी आंखों में भावनाएं होती हैं। हम कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आना, लेकिन जब बप्पा अगले साल फिर से आएंगे तो हमारा पर्यावरण भी पहले से बेहतर होगा।
2: बिल्कुल,
1: हमारे तालाब साफ हो, हमारी नदियाँ स्वच्छ हो, हमारे आसपास हरियाली और हमारा समुदाय प्रकृति के प्रति और अधिक जागरूक हो।
0: जी जी,
1: श्रोता साथियों, क्यों न इस बार बप्पा को विदाई देते हुए हम सभी मिलकर एक संकल्प ले कि हम उत्सव मनाएंगे लेकिन प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
0: जी,
1: हम बप्पा की पूजा करेंगे लेकिन उनके बनाए इस सुंदर संसार की भी रक्षा करेंगे।
0: जी हाँ,
1: और सबसे खूबसूरत बात, बप्पा की विदाई ऐसी हो कि आस्था भी मुस्कुराए और प्रकृति भी मुस्कुराए।
2: तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों से कि श्रोता साथियों, आज बप्पा की विदाई का क्षण है, आंखों में नमी है, दिल में भक्ति है और मन में एक ही आवाज है कि बप्पा अगले बरस तो जल्दी आना। लेकिन इस बार बप्पा को विदा करते हुए सिर्फ उन्हें वापस आने का निमंत्रण न दे, बल्कि उन्हें एक वचन भी दे, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था कि जिस धरती ने हमें जीवन दिया उसकी हम रक्षा करें, जिस जल ने हमारी प्यास बुझाई उसे हम मिला नहीं करें, जिस हवा ने हमें सांस दी उसे प्रदूषित नहीं करें और जिस प्रकृति को ईश्वर ने हमें सौंपा है उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखें। हे गणपति बप्पा, आप मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही लौट जाएंगे, लेकिन जाते जाते हमारे मन में एक ऐसी सोच छोड़ जाइए जो हमेशा हमारे साथ रहे। जब हम किसी नदी या तालाब को देखें तो उसमें सिर्फ पानी नहीं, आपका आशीर्वाद दिखाए। जब कोई पेड़ हमें छांव दे तो हमें उसमें आपकी कृपा महसूस हो, और जब हम प्रकृति को स्वच्छ रखें तो हमें लगे कि हमने बप्पा की पूजा केवल मंदिर में नहीं बल्कि उनके बनाए संसार की सेवा करके की है, क्योंकि बप्पा को सबसे सुंदर विदाई फूलों से नहीं, हमारे अच्छे कर्मों से मिलेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
2: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
2: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को
2: नमस्कार।
0: साथी श्रोता साथियों, आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और वागर रेडियो 90.8 FM के माध्यम से आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का जो सिलसिला है वो हमारा आपके साथ रोजाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच श्रोता साथियों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपने पसंदीदा नगमे हम तक पहुंचाना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं वागर रेडियो 90.8 FM के माध्यम से, तो जरूर सुन सकते हैं श्रोता साथियों। आपको करना क्या है, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देने हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, हमें इंतजार रहेगा आपकी फरमाइश के गीतों का। तो अब जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और ढेरों फरमाइशें कार्यक्रम के माध्यम से आ चुकी है श्रोता साथियों, तो मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगी पहली फरमाइश की ओर बढ़ने की। साथियों, पहली फरमाइश हमारे बीच आई है शास्त्रीय नगर बीर शहर से। फिल्म का नाम है लगान, गीत के बोल हैं ओ पालनहारे। फरमाइश करता जो जुड़ रहे हैं, इस गीत को सुनना चाह रहे हैं शास्त्रीय नगर बीर शहर से, किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल, इसी बीच अमरावती से जुड़ना चाह रहे हैं प्रशांत ढेकरे, वर्षा ढेकरे, श्रद्धा ढेकरे, और भी श्रोता साथी सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को। नाम बताना चाहूंगी श्रोता साथियों, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं चन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, सुशील देवांगन जी, रंजन साहू जी, इसी बीच और भी दोस्त खंडवा से जुड़ रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं इस गीत को राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन, हनुमानगढ़ राजस्थान से अनुरोध करता जुड़ रहे हैं भाई प्रेम सिंह वडवाल, सुखवीर लखवीर वडवाल, रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण चेतन, नवी रंगीला, निशान अनमोल, प्यारा बेटा, चटकू मटकू, महावीर गीता मलकर, सुखचैन सिंह बूटा, इसी बीच श्रोता साथियों बाबा कुटीर रायगढ़ से भी श्रोता साथी हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को। जुड़ना चाह रहे हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं ओ पालनहारे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम में शुरू हो चुका है, तो मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश की ओर। साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है बिलराम गेट कासगंज से। फिल्म का नाम है जुल्म, गीत के बोल है जब कोई बात बिगड़ जाए। श्रोता साथियों, फरमाइश करता है इस गीत से जुड़ रहे हैं एम असलम सैफी, जेबिनुस्सा बेगम, अकरम सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, आबाद खान जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी हैं जो पसंद करते हैं इस गीत को। सारंगपुर राजगढ़ मध्य प्रदेश से धनराज बरागी, सीमा बैरागी, किट्टू खुशी और लक्ष्मी जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं पिपरिया से भी दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी इंद्राणी माया साहू। और भी दोस्त हमारे जुड़ना चाह रहे हैं डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अजमान अंसारी, बेगम अनुशी वली, राज एजरी अंसारी, करुणा राज सारनपुर से है, सुरेश डुकर, गुड़िया और आशा डुकर। इसी बीच और भी श्रोता साथी कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से सुनना चाह रहे हैं इस गीत को। अनुश्री वली, प्रमिला वली, सारनपुर से सुरेश पासवान, सोलानी पासवान। लोहारा से जुड़ रहे हैं बालोद से डोली मिनहार, प्रभार मिनहास। और भी श्रोता साथी हैं जो सुनना चाहते हैं इस गीत को। बताना चाहूंगी श्रोता साथियों आपको, बिहार कॉलोनी लोनी से हैं नसीमुल इस्लाम गुनोरी, प्रकाशवीर राजपूत, बालोद से कमलेश जयपुरिया, चंद्रनगर से रजनी सिंह चौहान, पिंकी दुर्गा कुमारी जी, रायगढ़ से है लालचंद मिश्रा, कुमकुम मिश्रा जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी खंडवा बिहारी पुरम से जुड़ना चाह रहे हैं महेंद्र यादव, बीना यादव, रजनी सिंह चौहान, गुड़िया अजिता चौहान। विरंगाम सिटी से कृष्णा देवी पाटिल, संगीत कुमार और वाणी कुमारी जी। इसी बीच आठ बिलाई से जुड़ना चाह रहे हैं बेगम अनुश्री यादव, सुमन यादव, सिमरन यादव। और भी श्रोता साथी हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को। तालुका पंडपुर से जुड़ना चाह रहे हैं जाखिल मुलाड़ी, सुबिया सलमा, मुमताज, दिलसाद, नसीर भी, बानो भी, बादशाह मुलाड़ी, ये पंडपुर से जुड़ रहे हैं। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी हैं जो मोहाली पंजाब से जुड़ रहे हैं, बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जब कोई बात बिगड़ जाए। तब तक आप बने रहिएगा दोस्तों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है ऑरेंज सिटी नागपुर से। फिल्म का नाम है डॉन। गीत के बोल है, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा। फरमाइश करता है इस गीत के जुड़ रहे हैं ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुआ जाधव, पवन राजा जाधव, औरंगाबाद से मंगेश इंगले, संध्या इंगले, स्वराज विराज इंगले। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी अमरावती महाराष्ट्र से ही सिद्धार्थ गुणाने, अर्जन ताई गुणाने, प्रणय प्रसिद्धि, महेश रोमटके जी, प्रतिभा ताई गुणाने जी, हिरामन शंडे जी। मजनू का टिल्ला से जुड़ना चाह रहे हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल, सुग्री कला से अमीश शकुन, आरुषि ओशिका, आदित्य जंगेल, अंजलि जंगेल, ये छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। इसी बीच जवाहर नगर दुर्ग से भी अनुरोध करता पसंद करते हैं इसी गीत को, नाम बताना चाहूंगी साथियों, आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विन विपुल कामड़े जी। किशनगंज बिहार से श्रोता साथी जुड़ रहे रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और मेघा जी। इसी बीच जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत सोनू, पप्पी भाटिया। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। छत्तीसगढ़ धमतरी से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, सोंगा धमतरी, छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं ये। बोरखेड़ा पित्रा मल से हैं विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाहटा, दिशा कुश मुड़त, दिलीप सिंह पंवार जी। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी हमारे सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा, सार्थक सचिन शर्मा, रोहित शर्मा जी। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं राघव कुमार बघेल, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल जी। जुड़ रहे हैं श्रीरामपुर से अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुम्हार। और भी दोस्त से जुड़ना चाह रहे हैं मुरादाबाद से अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना जी, ये लदावली मुरादाबाद से हैं। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल है, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा।

श्रद्धा साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश आई है यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलाइया। ये फरमाइश हमारे बीच आई है सनावद मध्य प्रदेश से और फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश मालाकार, मुस्कान मालाकार और समस्त मालाकार परिवार सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। इसी बीच श्रोता साथियों और भी दोस्त जुड़ रहे हैं सहारनपुर से, जो पसंद करते हैं इसी गीत को। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो जी, चोकुनटी बुलंद शहर से श्रोता साथी जुड़ रहे हैं। जुड़ रहे हैं मोहम्मद सिद्धवासी, निगहत प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन सुहान, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं पतरोड से, विजय अंबाड़कर, सुनीता अंबाड़कर, ऋषिकेश अंबाड़कर, अक्षय अंबाड़कर, दुर्गा कॉलोनी हांसी से है राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी, कलानोर से जुड़ रहे नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन, मयंक शर्मा। श्रोता साथियों गंजू द्वारा गणेशपुर से भी श्रोता साथी पसंद करते हैं इसी गीत को। फिरासत हुसैन, अलक कुमार जहां, मोहम्मद अल्फेज, नाहिरा गुड़िया, आफरीन जुबिया जी। इसी बीच जोधपुर राजस्थान से श्रोता साथी पसंद करते हैं इसी गीत को। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। और भी दोस्त छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी से जुड़ना चाह रहे हैं सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, अंशुमन जी और बेबी ओवी जी। इसी बीच और भी दोस्त धनुरी तेलीवाला से सुनना चाह रहे हैं इस गीत को। निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं गोरी है कलाइया, दिला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। तब तक आप बने रहिएगा श्रोता साथियों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

श्रद्धा साथियों, जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो हम फिर से बढ़ते हैं अब हमारी अगली फरमाइश की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश आई है, आपको बताना चाहूंगी, सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से। फरमाइश करताओं की फरमाइश है कि सुनाया जाए अग्निपथ फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत गणपति अपने गांव चले। और फरमाइश करता जुड़ रहे हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को, किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, सोनू सूरज, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं वसीम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल शुरू से, परिधि शुरू से, मायरा शुरू से। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में, बताना चाहूंगी यवतमाल महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्न लोखंडे और रक्षंता लोखंडे जी, और समस्त लोखंडे परिवार सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। इसी बीच भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हिमकेश्वर साहू, कर्ण राहुल साहू, चंपा साहू। और भी श्रोता साथी खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं सालिया डावर, हलीमा डावर, जिक्रा डावर, आयशा खत्री, फातिमा खत्री, तबस्सुम खत्री। धर्मपुरी से हैं मुसाजी खत्री, ईशाजी खत्री और जाकिर खत्री जी। श्रोता साथियों, दादरी गेट भिवानी से भी कुछ दोस्त हमारे जुड़ना चाह रहे हैं जो पसंद करते हैं इस गीत को, कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी, रेहान अंसारी जी। आठ बिलाई से बेगम अनुश्री वली, राजशी वली, प्रमिला वली। रिंगनी से जानवी डोमिन, करुणा डोमिन। लोहारा से जुड़ना चाह रहे हैं फर्जी हरिशंकर बेलदार जी, प्रभा देवी फर्जू जी। रायगढ़ से उमाराज जगदीश राज। इसी बीच और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में, बताना चाहूंगी दोस्तों आपको कबीरधाम छत्तीसगढ़ से हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीप्ता गुप्ता, रिमझिम गुप्ता, नवापारा से दीपक गुप्ता, अंकु और राघव गुप्ता जी। मलियान सरदार मेरठ से जुड़ रहे हैं अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोले हैं गणपति अपने गांव चले। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और बढ़ते हैं श्रोता साथियों फिर से अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश आई है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। श्रोताओं, फरमाइश करता है इस गीत को सुनना चाह रहे हैं रामचरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना बन्ना, प्रियल और दीवानशी विश्वकर्मा जी। इसी बीच उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं अलीगंज से दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य, सक्षम शाक्य। अहमदनगर से जुड़ रहे हैं नासिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल। जफराबाद से श्रोता साथी जुड़ रहे हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव, सक्षिताई राजे जाधव, संचित वयाल, प्रतिमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, प्रणाली देशमुख और सानवी देशमुख। छुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं गंगाधर एम करे, प्रमोद जी और प्रदीप जी। और भी दोस्त बुलढाणा महाराष्ट्र से है नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या जय हागे। श्रोता साथियों, छत्तीसगढ़ सरगांव से जुड़ना चाह रहे हैं नसीम मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद। इसी बीच लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से भी श्रोता साथी पसंद करते हैं इसी गीत को। जुड़ रहे हैं शंकर कोलाम, संतुष्ट कोलाम, संजय संध्या, शिवम कोलाम। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं नेहरू चौक पैठन से सुरेश यादव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। भवानी नगर से निर्मल पैठन, अरुण धोंगड़े, भाऊ साहिब धोंगड़े, अशोक धोंगड़े, आरती सुनंदा, हर्षवर्धन, कार्तिक, समीक्षा, निर्मल, परी धोंगड़े। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल है परदेसी परदेसी जाना नहीं।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी बघेरा दुर्ग से। गीत के बोल हैं विघ्नहर्ता गणेश गणराया। इसी भी श्रोता साथियों फरमाइश करता जुड़ रहे हैं इस गीत को जो पसंद करते हैं, संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, करजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से कुलेश्वर प्रसाद रजवाड़े, दीपक दीपा, चांदनी कृति। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में।

साथियों, बप्पा की विदाई केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि नई उम्मीद, नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच का संदेश है। जी हाँ, अनंत चतुर्दशी पर यही संकल्प लें कि भक्ति के साथ पर्यावरण बचाएं और मिलजुल कर खुशियां मनाएं। आप सभी को वागड़ रेडियो परिवार की तरफ से अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आप सभी के साथ, आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, इसी बीच अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है जुड़वा 2, गीत के बोल है सुनो गणपति पप्पा मोरिया। फरमाइश करता है इस गीत के साथियों, महाराष्ट्र से हैं किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर, छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं ये। गंज जुडवारा उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनास, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव। नेहरू चौक पेठर से हैं सुरेश यादव, अनीता यादव, आरती पूजा, प्रसाद यादव, सोनल यादव, वीवीसीआ यादव। जलाना शहर से हैं सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओम यादव, सुभाष यादव, चंदन यादव, एकनाथ यादव, संगीता यादव। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सुनो गणपति बप्पा मोरिया।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, इसी बीच अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है वीर जारा, गीत की बोल है तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण ने। फरमाइश करता है इस गीत के जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। और भी साथी हैं जो जुड़ रहे हैं। झारखंड से हैं मोहम्मद यासिन अंजाना, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिजरा नवाज, बीबी चाहत और सादिया, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना। मुरादाबाद से है ये। पतरोड से है विजय अम्बाडकर, सुनीता अम्बाडकर, अक्षय अम्बाडकर, राधिका अम्बाडकर और ऋषिकेश अम्बाडकर। वासी महाराष्ट्र से है मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी और मायरा सुरोशी। झज्जर से है बीटू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। फाजिलका पंजाब से है सुहास गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से है कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पाज मरावी, ऋषभ मरावी। और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं। शिवाजी चौक कटनी से हैं अनिल, अमर, दिलीप, राजू, रंजन, विपिन, प्रकाश, अरुण।

संजय पवन यादव, सुनील जैन लालू, सोना मोना, हनी, यश और सौम्या। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है अंदाज। गीत के बोल हैं, किसी से तुम प्यार करो। इस गीत को आवाज दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने। फरमाइश करता है इस गीत के मालियान सरथना मेरठ से हैं, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवम जैन सरथना मेरठ से हैं, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन पटियाला से है, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता। कलारून से है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। मुंगी पेठर महाराष्ट्र से है बाबा साहेब, साखरबाई, परमेश, रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी, पूरा कणंकर परिवार। अमरावती महाराष्ट्र से है सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना गुड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे और प्रतिभा गुड़ाने। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। मुरादाबाद दुलापुर उत्तर प्रदेश से है मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, काजल सीमा, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। डोडी लोहारा से है डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, किसे से तुम प्यार करो।

साथियों, अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है बागवन। गीत के बोल है मैं यहाँ तू वहाँ। फरमाइश करता है इस गीत के संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी जी। और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। अनुरोध करता है साथियों इसी गीत के साथ जुड़ने वाले। मजनू का टीला से हैं कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। इसी के साथ जुड़ रहे हैं नारायण खर्चे, ललित खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, साथी प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू देवी का चौधरी। ये सभी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, विटी अंजलि, नितिन जगमोहन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रामनंद कश्यप। दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है मैं यहाँ तू वहाँ।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसी बीच अगली फरमाइश आई है। गीत के बोल है, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। फिल्म का नाम है ये वादा रहा। फरमाइश करता है साथियों इस गीत की दिलावर खान

हसीना बानो एलिजा नयाब लड्डू रघुवीर नगर से हैं ये। कोपरगांव से हैं सुरेश वर्षा श्रद्धा और मानसी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी अर्चना जोशी हरमिंदर सिंह चावला बानी चावला लोकेश जोशी पायल जोशी अंकिता जोशी लक्ष्मी ध्रुव हंसिका जोशी वेदही जोशी। बत्सर से हैं पूनम नायडू जी खंडवा मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल गफार डावर जी। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आर्यन राज रोहित राज और पीयूष कुमार। अनारकली बाजा जंगराव से हैं सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मनोत्रा गव्या मनोत्रा सूचा सिंह पाठक और विनोद पुरी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल है तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा।

साथियों भी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, इसे भी चकली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत के बोल हैं भवरे ने खिलाया फूल। फरमाइश करता है इस गीत के यवतमाल से हैं मंजूताई लोखंडे, रामहरी लोखंडे, सूरज लोखंडे, अमिता लोखंडे और सुरमित लोखंडे। बरेली से है मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, शमा अंसारी, माहिनूर अंसारी, शमशाद भाई टीसवा वाले। राही नगर गंसुडवारा से है शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फिजान खान, ताबिश खान और आबाद खान। महाराष्ट्र से है सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल, अनमोल मानकर, शोभाताई मानकर और श्लोक और दीपाली। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं भवरे ने खिलाया फूल।

नरेंद्र नेताम कुसुम नेताम, बिहार से हैं मीरा सिंह ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से हैं सोनम सिंह अनामिका सिंह, नजुडवारा से हैं मोहम्मद यासिन हसमी, नजमा बेगम हसमी, तोशिफ हसमी, तैमूर हसमी और कलीम अंसारी। और भी साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। मुमाली महाराष्ट्र से हैं उद्धव पाटिल, अनूप कुमार, पलसी से हैं विजय और डॉक्टर जयश्री। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है, गली में आज चांद निकला।

साथियों, जैसा कि हमारी फरमाइशों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, इसी बीच अगली फरमाइश आई है मेरे रंग में रंगने वाली। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। फरमाइश करता है इस गीत के पराली छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन और भी साथी हैं जो जुड़ रहे हैं। कोड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश। टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से है ब्रजेश विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। अनुरोध करता है साथियों। राजस्थान से है शंभू दयाल खट्टक, विमला देवी खट्टक, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल खट्टक, योगेश कुमार खट्टक, दीपक कुमार खट्टक, कुमारी पूजा खट्टक। नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप, तृप्ता कुमारी, प्रिया, प्रशांत, प्रीमियम, वाणी और वामिका। भिलाड़ा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है मेरे रंग में रंगने वाली।

साथियों, अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है हम्पी शर्मा की दुल्हनिया। गीत के बोल हैं मैं तेनु समझावा। छत्तीसगढ़ से हैं पूजा, कविता और हर्षा। कोरबा से हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानु शानू, बपन मुनु, काना ठाकुर और हरिप्रिया। अनुरोध करता है इसी गीत के साथ में। अमरावती महाराष्ट्र से हैं सिद्धार्थ गुडानी, अर्चना ताई, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शिंडे और प्रतिभा गुडानी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। यही हमारे फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। साथियों, अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास, तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों, शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीवाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कार्यक्रम की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है समस्या समाधान, इसे आप सुन पाएंगे 8 बजे। तो श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा मैं आपको बता रही हूँ तो अंत में आप सुनेंगे 9 बजे शामी कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं, शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहाँ भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, जिन्हें आप इस संसार में लाए और जिनके कर्मों से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में। उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है। किंतु सुख और सुरक्षा क्या ये मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते?

0: माता पिता के दिए हुए अच्छे या बुरे संस्कार, उनकी दी हुई योग्य अथवा अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं? संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र। अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं, ऐसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। वस्तुतः जो माता पिता अपनी संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। स्वयं विचार कीजिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़े ने आपड़े में देखाए तो आपड़े ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरी निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जैया हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा।
3: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि पुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति पुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, अनंत यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका अंत दिखाई न दे, और अगर हम इस विचार को अपने जीवन से जोड़े तो एक बहुत खूबसूरत सवाल सामने आता है कि क्या हमारी सोच भी अनंत हो सकती है।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, इन्हीं बातों के साथ आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
1: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
0: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है अनंत चतुर्दशी और अनंत बनने की कोशिश। क्या हमारी सोच भी अनंत हो सकती है? साथियों, जैसे कि जब हम अनंत चतुर्दशी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में गणपति बप्पा की विदाई, पूजा पाठ, उत्सव, भक्ति और विसर्जन की तस्वीर उभरती है।
1: बिल्कुल,
0: कई दिनों तक हमारे बीच रहने के बाद बप्पा को विदाई दी जाती है।

0: लेकिन क्या श्रोता साथियों, आपने कभी सोचा है कि इस विदाई के पीछे छिपा संदेश सिर्फ धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है?
1: बिल्कुल,
0: अनंत चतुर्दशी हमें अनंत शब्दों पर सोचने का भी अवसर देता है। अनंत यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका अंत दिखाई न दे। और अगर हम इसी विचार को अपने जीवन से जोड़े तो एक बहुत खूबसूरत सवाल सामने आता है कि क्या हमारी सोच भी अनंत हो सकती है?
1: बिल्कुल।
0: क्या हम अपनी सोच को अपनी परिस्थितियों, असफलताओं, डर, लोगों की राय और छोटी से छोटी सीमाओं तक सीमित रखने के बजाय उसे बड़ा कर सकते हैं? तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी सवाल पर बात करने वाले हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन शुरुआत में जैसा कि गीत संगीत हमारे दोस्तों को हम सुनवाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना शुरुआत पहले एक प्यारे से गीत के साथ ही हम करें।
0: जी हाँ, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारा आपके साथ बातचीत का जुड़ चुका है। हम बात कर रहे हैं अनंत चतुर्दशी और अनंत बनने की कोशिश को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: और जानेंगे कि क्या हमारी सोच भी अनंत हो सकती है। जागृति जी, हम देखते हैं कि अनंत का अर्थ सिर्फ अंतहीन नहीं बल्कि असीम संभावनाएं भी होती हैं।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि दोस्तों, अनंत शब्द सुनते ही हमारे मन में कुछ ऐसा आता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जीवन में अनंत होने का मतलब ये भी नहीं है कि इंसान हर चीज में सबसे आगे निकल जाए।
1: जी हाँ।
0: या उसके पास सब कुछ हो। जागृति जी, अनंत सोच का मतलब होता है सीखने की कोई सीमा न रखना। जैसे कि एक युवा कहता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, लेकिन अनंत सोच कहती है कि मैं अभी इतना कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं और भी सीख सकता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: एक युवा कहेगा कि मुझसे एक बार गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ, लेकिन उसकी अनंत सोच उससे कहती है गलती हुई है लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
1: बिल्कुल।
0: वही युवा कहता है कि मेरे पास साधन कम है, लेकिन उसके अंदर की अनंत सोच उससे कहती है साधन कम हो सकते हैं लेकिन रास्ते खोजे जा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, यही सोच किसी व्यक्ति की दिशा को बदल सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि अक्सर हमारे सामने सबसे बड़ी बाधा कोई परिस्थिति नहीं होती बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। श्रोता साथियों, जैसे कि कहना चाहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास मौका नहीं है, लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गया तो, मेरे जैसे छोटे शहर या गांव से आने वाले लोग कितने आगे जा सकते हैं, और धीरे धीरे ये बातें हमारी सोच की दीवार बन जाती है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन जरा सोचिए श्रोताओं कि अगर हर इंसान अपनी पहली असफलता के बाद रुक जाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को पहली बार किसी विषय में अंक कम मिले और वो मान ले कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, तो क्या वो कभी बेहतर कर पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: अगर कोई युवा पहली नौकरी के लिए प्रयास करे और असफल हो जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके लिए भी रास्ते बंद हो जाए। बिल्कुल नहीं। एक रास्ते का बंद होना पूरी यात्रा का अंत नहीं हो सकता।
0: जी हाँ जागृति जी, ऐसे में अनंत सोच का पहला कदम है श्रोता साथियों, मैं सीख सकता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि आज के युवाओं के लिए सबसे जरूरी बातों में से एक है लर्निंग माइंडसेट, जैसे कि सीखते रहने की मानसिकता।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि मैं आज से थोड़ा और क्या सीख सकता हूँ। नई भाषा सीखना हो, कोई कौशल सीखना हो साथियों, खेती की कोई नई तकनीक समझनी हो, कंप्यूटर सीखना हो, रेडियो प्रोडक्शन सीखना हो, कैमरा चलाना हो, या किसी परीक्षा की तैयारी करनी हो।
1: जी हाँ।
0: या फिर अपने व्यवहार को बेहतर ही क्यों न बनाना हो। हर जगह सीखने की संभावनाएं मौजूद है। ज्ञान की दुनिया इतनी बड़ी है जागृति जी कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ सीख लिया।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए युवा जीवन में सबसे सुंदर आदत हो सकती है और वो ये है कि हर दिन खुद से ये कहना कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला।
1: बिल्कुल कशिश, और हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, अनंत सोच और सपने, यानी कि सपने भी हमारी सोच का हिस्सा है, लेकिन कई बार हम अपने सपनों को परिस्थितियों के हिसाब से छोटा कर देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम सोचते हैं कि ये सपना मेरे लिए बहुत बड़ा है, मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है, मैं छोटे शहर से हूँ, मेरे पास ज्यादा संसाधन नहीं है, मेरे आसपास कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। लेकिन सपना देखने के लिए हमेशा बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती है। एक छोटे से गांव का युवा भी सपना देख सकता है, एक साधारण परिवार का विद्यार्थी भी नई ऊंचाइयों के बारे में सोच सकता है।
0: बिल्कुल।
1: एक लड़की अपने लिए नए अवसरों की कल्पना कर सकती है, एक किसान का बेटा कृषि के साथ तकनीक जोड़ने का सपना भी देख सकता है। सपनों की शुरुआत अक्सर संसाधनों से नहीं, सोच से होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से हमारी बातें श्रोता साथियों से चली रही हैं अनंत चतुर्दशी के महत्व और अनंत बनने की कोशिश को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें हम आगे भी जारी रखेंगे युवा साथियों से, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, अनंत चतुर्दशी और अनंत बनने की कोशिश, क्या हमारी सोच भी अनंत हो सकती है को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम कहना चाहेंगे कि अनंत सोच का मतलब हर चीज में हाँ कहना नहीं है। साथियों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अनंत सोच का अर्थ ये नहीं कि हम बिना सोचे हर काम को करने लगे।
1: बिल्कुल।
0: अनंत सोच का मतलब है कि बिना सीमा के भागना नहीं, बल्कि अपनी संभावनाओं को सीमित करके न बैठ जाना है। हमें अपनी वास्तविक परिस्थितियों को समझना होगा, योजना बनानी होगी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा।
1: बिल्कुल।
0: उदाहरण के लिए आपको बता सकते हैं कि अगर कोई युवा डॉक्टर बनना चाहता है तो सिर्फ सपना देखना पर्याप्त नहीं है, उसे पढ़ाई करनी होगी, सही मार्गदर्शन लेना होगा, समय देना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी।
1: जी हाँ।
0: यानी कि कह सकते हैं कि बड़ी सोच, सही दिशा, लगातार प्रयास, तभी वास्तविक प्रगति संभव है।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही बात करें तो युवाओं के जीवन में असफलता एक ऐसा शब्द है जिससे कई लोग डरते हैं। जैसे कि परीक्षा में कम अंक आ गए तो असफलता मिली, इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ तो उसे असफलता मान लिया जाता है, किसी प्रतियोगिता में हार गए या किसी काम में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला। ऐसे में श्रोता साथियों, हमारा मन कहता है कि बस अब नहीं होगा, लेकिन आपकी अनंत सोच आपसे कहेगी कि एक परिणाम आपके पूरे भविष्य को तय नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल।
1: असफलता हमें ये बता सकती है कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत होती है। अगर परीक्षा में कम अंक आए तो ये देखने का अवसर है साथियों की तैयारी में कमी कहाँ रह गई। अगर इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ तो ये समझा जा सकता है कि अगली बार किस कौशल को बेहतर करना है।
0: बिल्कुल।
1: अगर किसी योजना में सफलता नहीं मिली साथियों, तो उससे अनुभव लिया जा सकता है। इसलिए असफलता को अंतिम दरवाजा समझने के बजाय एक सीखने वाला पड़ाव समझना जरूरी होता है।
0: जी हाँ कशिश, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि दूसरों की सोच हमारी सीमा क्यों बने।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि साथियों, युवाओं के सामने एक और बड़ी चुनौती होती है कि लोग क्या कहेंगे। हम कई बार अपना निर्णय इसलिए बदल देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि दूसरे क्या सोचेंगे।
1: बिल्कुल।
0: अगर मैं ये करूंगा तो लोग हंसेंगे, अगर मैं नया काम शुरू करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन याद रखिए श्रोताओं कि लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन हमारा जीवन हमारे साथ रहता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए सलाह सुनना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सोच और निर्णय को समझना भी जरूरी है। युवाओं को दूसरों की बातों से सीखना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान केवल दूसरों की राय से तय नहीं करनी चाहिए।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि दोस्तों हमारी सोच पर डिजिटल दुनिया का बहुत बड़ा प्रभाव है।
0: बिल्कुल।
1: हम सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों तस्वीरें, वीडियो और विचार देखते रहते हैं। कभी किसी की सफलता देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, तो किसी की उपलब्धि देखकर हमारे युवा साथी सोचते हैं जागृति जी कि उनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा। किसी का नया करियर देखकर हमें अपना रास्ता गलत लगने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ऐसे में हमें याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया किसी की पूरी

0: यही रचनात्मक सोच समाज को आगे ले जाती है। गांव में स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प, कृषि, पर्यटन, डिजिटल सेवाएं, छोटे व्यवसाय और कौशल आधारित काम, इन सब के नए अवसर तलाशे जा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जरूरी है श्रोताओं कि युवा सिर्फ समस्या न देखे बल्कि समाधान के बारे में भी सोचे। और कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है। कुछ दिनों की उपस्थिति के बाद विसर्जन होता है। ये दृश्य हमें एक सुंदर बात याद दिला सकता है कि जीवन में कुछ चीजें आती है, हमें अनुभव देती है और फिर आगे बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल,
0: त्योहार भी आता है कशिश और चला जाता है, समय भी आता है और गुजर जाता है, बचपन भी गुजर जाता है, स्कूल और कॉलेज के दिन भी गुजर जाते हैं। श्रोताओं, लोगों की भूमिकाएं बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन इन बदलावों के बीच हमारी सीख हमारे साथ रह जाती है।
1: हाँ।
0: इसलिए बप्पा की विदाई के साथ सिर्फ ये न सोचे कि उत्सव खत्म हो गया, बल्कि आप खुद से पूछे कि मैं इस उत्सव से अपने जीवन में क्या लेकर जा रहा हूँ।
1: बिल्कुल,
0: क्या मैं धैर्य लेकर जा रहा हूँ, क्या मैं सकारात्मक सोच लेकर जा रहा हूँ, क्या मैं पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को लेकर जा रहा हूँ, क्या मैं अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेकर जा रहा हूँ, क्या मैं अपने सपनों को थोड़ा और गंभीरता से लेने का निर्णय लेकर जा रहा हूँ। अगर हाँ, तो त्योहार हमारे लिए सिर्फ कुछ दिनों का आयोजन नहीं रहा, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अनंत चतुर्दशी, जब हम अनंत शब्द सुने श्रोता साथ, तो इसे केवल एक धार्मिक शब्द की तरह हम न देखें।
0: बिल्कुल,
1: इसे अपने जीवन से जोड़ कर भी देखें कि हमारी परिस्थितियां सीमित हो सकती है, हमारे संसाधन सीमित हो सकते हैं, हमारा समय सीमित हो सकता है, लेकिन सीखने की इच्छा को हम सीमित क्यों करें।
0: बिल्कुल,
1: सपने देखने की क्षमता को हम सीमित क्यों करें साथियों, नई शुरुआत करने का साहस सीमित क्यों हो, दूसरों के लिए अच्छा करने की भावनाएं सीमित क्यों हो। शायद अनंत बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ हासिल कर लें, बल्कि अनंत बनने का अर्थ है हर दिन अपने भीतर एक नई संभावनाएं को जगह देना।
0: जी हाँ,
1: आज जहाँ है वहीं से आगे बढ़ना है, आज जितना जानते हैं उससे थोड़ा और सीखना है युवा साथियों, आज जितना आप सोचते हैं उससे थोड़ा और बड़ा सोचना है, और जब कोई रास्ता बंद मिले तो ये मानकर नहीं बैठ जाना है कि यात्रा खत्म हो चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज आप एक छोटा सा सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा कि मेरी सोच की सीमा कहाँ है और क्या मैं उसे थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जागृति जी, जिंदगी में सबसे खूबसूरत बदलाव तब आता है जब इंसान परिस्थितियों से पूछना बंद कर देता है कि मैं कितना कर सकता हूँ, और खुद से पूछना ये शुरू करता है कि मैं और क्या सीख सकता हूँ।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, हम सभी के द्वारा बप्पा से यही प्रार्थना है कि हमारे भीतर बुद्धि हो, धैर्य हो, सही दिशा हो और हमारी संभावनाओं को पहचानने का हमारे अंदर साहस हो।
0: बिल्कुल, इसलिए कहा गया है कशिश कि गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल दिया। तो याद रखिए श्रोता साथियों, सोच छोटी हो तो अवसर भी छोटे दिखाई देते हैं, सोच बड़ी हो तो रास्ते तलाशने की हिम्मत भी पैदा होती है।
1: जी
0: इसी
1: हाँ।
0: उम्मीद के साथ, इसी सकारात्मक सोच और इसी अनंत संभावनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं, पर जाने से पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो दोस्तों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भाइयों बहनों, जहीर है ग्राम सभा में बोनी बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल थकी जरूर बोनी में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे है ई इन्होंने रक्षा करे है, तो आओ बोना ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जया पेड़ ने छाव में आपने रह हूं या आपने ने कितनी शांति मिले है, जय हवा में आपने हाल हूं ये भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। हो भी अगर पेड़ ने रहेगा तो आपने हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ूंगा, पानी ने बचाड़ूंगा ने अपनी धरती ने जीवन दान आलूंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटो अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉकेट रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर, लेकर हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है, बच्चों में अच्छे खान पान की आदतें कैसे विकसित करें। जी हाँ, बच्चा खाना देखकर मुंह बना ले, सब्जी देखते ही प्लेट दूर कर दे, दूध के लिए बहाने बनाए और हर थोड़ी देर में बिस्किट और नमकीन मांगे, मोबाइल देखते देखते खाना खाए या फिर खाना खाने के लिए माता पिता को उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़े, तो यह स्थिति बहुत से घरों में हमें देखने को मिलती है। अब सवाल ये आता है श्रोता साथियों कि क्या बच्चे की इन आदतों को सिर्फ डांट कर बदला जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों को सिर्फ यह बताना कि यह मत खाओ वह मत खाओ काफी नहीं होता है। उसे धीरे धीरे समझाना, सही विकल्प देना, खाने का समय तय करना और सबसे जरूरी, घर के बड़े खुद अच्छी आदतों का उदाहरण बन सकते हैं। तो आइए, आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारी इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में अच्छे खान पान की आदत हम कैसे विकसित करें। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया कि हमें बच्चों को डांटना नहीं है बल्कि धीरे से उन्हें चीजें समझानी है। इसी बात को समझने के लिए आज सुनिए हमारी कहानी। कहानी है दो महिलाओं की जिनकी बातचीत से सामने आएगा कि बच्चे के खाने की आदतें एक दिन में नहीं बदलती लेकिन प्यार, धैर्य और सही तरीके से जरूर बदल सकती है। तो चलिए सुनते हैं प्लेट में आया बदलाव। अरे यार, आज तो सुबह से ही परेशान हूँ कविता में। समझ ही नहीं आ रहा कि इस बच्चे को क्या खिलाऊं। नाश्ता सामने रखती हूँ तो कहता है मुझे नहीं खाना, दूध देती हूँ तो मुंह बना लेता है और सब्जी तो उसके प्लेट में जाती ही नहीं है।
1: अरे सुनीता, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कुछ दिन से ही ऐसा कर रहा है क्या?
0: कुछ दिन से नहीं, काफी समय हो गया है कविता। पहले तो मुझे लगा कि बच्चे हैं, थोड़ा बहुत नखरा करते हैं, लेकिन अब तो हालात ये हैं कि सुबह उठते ही बिस्किट चाहिए। दोपहर में खाना खाने बैठता है तो सब्जी देखकर कह देता है कि मुझे यह नहीं पसंद।
1: ओह, फिर तुम क्या करती हो?
0: क्या करूं? खाना नहीं खाएगा तो भूखा रह जाएगा, इसलिए उसके पसंद की चीज बना देती हूँ। कभी नूडल्स, कभी नमकीन की रोटी, कभी पराठा, जो मांगता है वही दे देती हूँ।
1: अच्छा, और फल का क्या?
0: फल भी रखती हूँ लेकिन हाथ ही नहीं लगाता। चिप्स का पैकेट दिखा तो तुरंत खत्म कर देता है।
1: ओह, मोबाइल देखकर खाना खाता है क्या?
0: हाँ, वो भी एक समस्या है। बिना मोबाइल के तो खाना ही नहीं चाहता। कार्टून चला दो, फिर दो चार निवाले उसके मुंह में ही डालती हूँ।
1: मतलब बच्चा खाना कम और मोबाइल ज्यादा देखता है।
0: अब तो मुझे खुद लगता है कि मैंने ही इसकी आदत बिगाड़ दी है।
1: अरे सुनीता, अपने आप को दोष देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अब धीरे धीरे तुम्हें आदत बदलनी जरूर पड़ेगी।
0: सही कह रही हो कविता, मैंने बहुत कोशिश की। एक दिन मोबाइल बंद किया तो उसने खाना ही नहीं खाया, बहुत रोया, आखिर में मुझे मोबाइल देना पड़ा।
1: यही तो बात है, आदत अगर लंबे समय से बनी है तो एक दिन में तो नहीं जाएगी। बच्चे को अचानक हर चीज से रोकने के बजाय हमें धीरे धीरे बदलाव करने होंगे।
0: सही कह रही हो। पहले तो मैं सोचती थी कि बच्चा है, जो मांग रहा है दे दो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हर मांग पूरी करना सही नहीं था।
1: देखो, बच्चा खुद से यह नहीं तय कर सकता कि उसके लिए रोज क्या अच्छा है और क्या नहीं, उसे घर से सीखना पड़ता है।
0: लेकिन उसे सब्जियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो खाता ही नहीं है कविता।
1: अच्छा, एक बात बताऊं तुम्हें, बच्चे को किसी चीज से नफरत करवाने में हम बड़े भी कभी कभी मदद कर देते हैं।
0: वो कैसे?
1: मान लो तुमने एक दिन पालक की सब्जी बनाई और बच्चे ने मना कर दिया। तुमने कहा अच्छा

0: रखा, फिर अगले दिन उसके लिए अलग से उसकी पसंद का तुमने खाना बना दिया। तो बच्चे ने इससे क्या सीखा? उसे तो पालक पसंद ही नहीं है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। सब्जी से मना करो और अपनी पसंद की चीज मिल जाएगी तो बच्चे तो ये बात अवश्य करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो फिर क्या करूं? भूखा थोड़ी रख सकती हूँ।
0: अरे भूखा रखना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर बार उसकी मांग पर अलग खाना बनाना भी जरूरी नहीं है। घर में जो पौष्टिक खाना बना है उसमें से उसकी पसंद की कोई चीज साथ रख दो। धीरे धीरे नए स्वाद से बच्चे को परिचित कराओ।
1: मतलब जबरदस्ती ना करो?
0: नहीं बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करनी है। बच्चे को प्लेट दिखाकर डांटना नहीं है कि इतना खाना है तो खत्म करो, बल्कि उसे खाने से दोस्ती करवानी है।
1: अच्छा ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करती हूँ। अरे कविता।
0: हाँ सुनीता।
1: तुम्हारी बातों से वास्तव में बदलाव शुरू हो गया।
0: अच्छा ऐसा क्या हो गया?
1: अरे मैंने बताया था ना तुम्हें कि मेरा बेटा सुबह उठते ही बिस्किट खाता था। अब मैंने सुबह उठते ही बिस्किट देना बंद कर दिया।
0: अच्छा फिर क्या करता है तुम्हारा बच्चा?
1: पहले दिन खूब नाराज हुआ, बोला बिस्किट चाहिए बिस्किट चाहिए। मैंने कहा पहले नाश्ता करो फिर मिलेगा, लेकिन उसने खाना ही नहीं खाया।
0: फिर
1: मैंने उसे डांटा नहीं, मैंने उसकी पसंद की चीजों में थोड़ा बदलाव किया। कभी पोहे में मूंगफली सब्जियां डालकर दिया, तो कभी रोटी के साथ दही, कभी घर का बना पराठा, तो थोड़ा फल दे दिया।
0: और उसने खाया?
1: पहले तो बहुत कम, लेकिन फिर कविता मैंने जबरदस्ती भी नहीं की। 2-3 दिन बाद उसने थोड़ा ज्यादा खाना अपने आप ही शुरू कर दिया।
0: अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा तुमने, बच्चा भूखा नहीं रहना चाहता, बस उसे सही विकल्प और समय चाहिए होते हैं।
1: और एक बात मैंने और भी बदली है।
0: वो क्या?
1: पहले मैं खुद चाय के साथ नमकीन और बिस्किट खाती थी और बच्चा पास में बैठा रहता था, फिर मैं उसे कहती थी तुम मत खाना।
0: अरे बच्चे तो वही सीखेंगे ना जो सामने देखेंगे।
1: तो अब मैंने उसके सामने बार बार पैकेट वाली चीजें खाना कम कर दिया है। घर में फल रखती हूँ और कभी कभी उसे खुद चुनने देती हूँ कि केला खाना है या सेब।
0: अच्छा ये तो बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे में बच्चे को निर्णय लेने में थोड़ा शामिल करने से उसकी रुचि और बढ़ती है।
1: और तुम्हें मालूम है कविता, एक और तरीका अपनाया है अब तो मैंने।
0: अब क्या नया किया सुनीता?
1: पहले मैं उसकी प्लेट भरकर सामने रख देती थी, प्लेट देखकर ही बोल देता है इतना सारा नहीं खाना।
0: अच्छा फिर?
1: फिर क्या, अब मैं थोड़ी मात्रा में रखती हूँ, जब वह खत्म कर देता है तो पूछती हूँ और चाहिए क्या।
0: ओ ये तो बहुत जरूरी बात है, बच्चे की भूख हर दिन एक जैसी नहीं होती है।
1: पहले मैं सोचती थी कि प्लेट पूरी खत्म करनी ही चाहिए, अब मैं उसे आराम से खाने देती हूँ।
0: और खाने के समय टीवी या मोबाइल,
1: उसे भी मैं अब धीरे धीरे कम कर रही हूँ। शायद हो सकता है कि कम हो जाए।
0: अच्छा वो कैसे?
1: अरे कविता तुम तो जानती ही हो ना, अचानक तो मैं बंद कर नहीं सकती। पहले रोज खाने के समय मोबाइल चलता था, मैंने पहले एक समय का खाना मोबाइल के बिना करवाना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो बार बार पूछता था मोबाइल कब मिलेगा।
0: फिर
1: मैंने उससे बात करना शुरू किया, पूछा आज क्या हुआ, तुमने कौन सा गेम खेला, स्कूल में क्या सीखा। पहले वह खाना छोड़कर बातें करता था, फिर धीरे धीरे खाने और बातचीत दोनों में रुचि आने लग गई उसको।
0: अरे वाह, यानी कि खाने की मेज सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं रही, अब तुम्हारी परिवार के साथ बैठने की जगह बन गई है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तुमने बताया था कि उसे फल सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसमें भी कुछ बदलाव आया है क्या?
1: उसमें सबसे ज्यादा समय लगा मुझे।
0: ऐसा क्या किया?
1: पहले मैं कहती थी सब्जी खाओ नहीं तो ताकत नहीं आएगी, वह सुनते ही मुंह फेर लेता था।
0: फिर
1: मैंने तरीका बदला, उसे सब्जी खरीदते समय अपने साथ ले जाने लगी, बाजार में उससे पूछती आज कौन सी सब्जी ले।
0: अच्छा
1: फिर घर पर उसे सब्जी धोने में छोटी सी मदद लेने लगी, खाना बनाते समय बताती कि आज हमने कौन सी सब्जी बनाई है।
0: इससे उसे लगा कि वह भी इस काम का हिस्सा है।
1: और फिर मैंने उसकी पसंद की चीजों के साथ नई चीज मिलाना शुरू कर दिया। जैसे कि पराठा पसंद था तो कभी उसमें बारीक कटी सब्जियां डाल दी, दही पसंद था तो उसके साथ फल दिया, कभी दाल के साथ अलग अलग सब्जियां रखी। इस तरीके से मैंने बदलाव कर दिया।
0: बिल्कुल, बदलाव की कोशिश तो अच्छी है, लेकिन अब क्या हो रहा है?
1: अब हर सब्जी नहीं खाता, लेकिन पहले की तरह प्लेट देखकर भागता भी नहीं है।
0: यही तो बदलाव है। अच्छी आदत का मतलब ये नहीं है सुनीता कि बच्चा एक दिन में हर चीज खाने लगे। मतलब ये है कि वह नए भोजन को स्वीकार करना धीरे धीरे सीख रहा है।
1: अरे, इतना करने के बाद भी एक परेशानी अभी भी बनी हुई है कविता।
0: परेशानी? कौन सी परेशानी?
1: चॉकलेट, चिप्स और नमकीन।
0: अरे, अभी तक वो समस्या खत्म नहीं हुई है क्या? कोई बात नहीं, बच्चों को कभी कभी पसंद की चीजें चाहिए भी होती है। हर चीज पर पूरी रोक लगाना जरूरी नहीं होता सुनीता, लेकिन इन्हें रोज की आदत भी नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखना।
1: अरे, पहले तो हर दिन स्कूल से आते ही पैकेट मांगता था,
0: और अब?
1: अब मैंने घर पर कुछ विकल्प तैयार करना शुरू कर दिया है। कभी भुना चना, कभी मखाना, कभी फल, कभी घर का बना नाश्ता, जो उपलब्ध होता उसमें से चुनने देती थी।
0: अच्छा, तो ये तो खाने की बात हुई, लेकिन पानी का क्या?
1: अरे, क्या बताऊं, पहले पानी की जगह बार बार अलग अलग चीजें खाने के लिए कहता था। बाजार में आजकल मिलते हैं ना वो मीठे पे।
0: अच्छा,
1: लेकिन अब उसकी पानी की बोतल हमेशा साथ रहती है।
0: ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन बच्चों में पानी पीने की आदत भी बहुत जरूरी होती है।
1: मैंने उसे यह भी सिखाया कि प्यास लगने का इंतजार किए बिना दिन में समय समय पर पानी पीना है।
0: अच्छा, एक बात बताओ सुनीता, घर के बाकी लोग भी इन बदलावों के साथ खड़े हैं क्या?
1: अब दे रहे हैं। पहले तो दिक्कत यही थी कि मैं बच्चे को कहती थी चिप्स मत खाओ, और घर में कोई दूसरा उसके सामने चिप्स खा रहा होता था।
0: ओ, फिर तो बच्चा कैसे समझेगा?
1: अब हमने तय किया है कि बच्चे के सामने खाने पीने की आदतों में हम सावधानी रखेंगे। खाना समय पर खाना, फल सब्जियां खाना, पानी पीना और भोजन की बर्बादी न करना, इन सब में हम खुद उदाहरण बनने की कोशिश कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छा तरीका है। बच्चे कानों से जितना सीखते हैं ना, आंखों से उससे कई ज्यादा सीखते हैं।
1: और अब तो कभी कभी वह खुद मुझे बोलता है, मम्मी आज फल खाया।
0: अच्छा, यानी कि अब बच्चा तुम्हें भी याद दिलाने लगा है।
1: हाँ, और पिछले रविवार को उसने खुद कहा, आज सब साथ बैठकर खाना खाएंगे।
0: अरे वाह, बस यही तो असली बदलाव है।
1: पहले खाने के समय में कविता, हमारे घर में रोज लड़ाई का समय होता था,
0: और अब?
1: अब भी कभी वह खाना छोड़ देता है, कभी कोई सब्जी पसंद नहीं करता, कभी ज्यादा खेलने के चक्कर में देर करता है, लेकिन अब मैं हर बार गुस्सा नहीं करती हूँ।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है।
1: क्योंकि मैंने समझा कि बच्चे की प्लेट बदलने से पहले हमें अपना तरीका बदलना होगा।
0: बिल्कुल सुनीता,
1: अब मैं उसे डरा कर नहीं खिलाती हूँ, नहीं खाया तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, नहीं लालच देती हूँ कि सब्जी खाओगे तो चॉकलेट दूंगी।
0: तो फिर क्या करती हो तुम?
1: अरे, मैं उसे बताती हूँ कि खाना हमारे शरीर को काम करने की ताकत देता है, अलग अलग चीजें शरीर के अलग अलग काम में मदद करती हैं, और सबसे जरूरी, खाना कोई परीक्षा नहीं है कि प्लेट पूरी साफ करनी है।
0: अच्छा, लेकिन तुम जो ये सारी चीजें जब अपने बच्चे को बताते हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बच्चे ने क्या सीखा?
1: अरे, उसने सीखा कि खाना समय पर खाना है, धीरे धीरे खाना है, हाथ साफ करके खाना है, और पानी पीना है, फल सब्जियों को मौका देना है, और हर दिन पैकेट वाली चीजें नहीं मांगनी है।
0: और तुमने?
1: मैंने भी सीखा कि बच्चों की आदत बदलने के लिए सिर्फ बच्चे को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पूरे घर का माहौल बदलना पड़ता है।
0: सही कहा सुनीता, अच्छी खान पान की आदतें बच्चे को डांट कर नहीं, बल्कि रोज रोज के छोटे छोटे उदाहरणों से ही सिखाई जा सकती है।
1: और शुरुआत आज से करें श्रोता साथियों, तो धीरे धीरे हमारे घर के खाने की मेज भी बदल सकती है।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों, आपने सुना, एक बच्चे की आदतें अचानक नहीं बदलती, न कोई जादू हुआ, न कोई एक दिन का नियम काम आया, बदलाव आया धीरे धीरे। बिस्किट की जगह पौष्टिक नाश्ता आया, मोबाइल की जगह बातचीत ने जगह ली, प्लेट भर कर खिलाने की जगह बच्चे की भूख को समझना शुरू किया गया। सब्जी से भागने वाले बच्चों को सब्जी चुनने और तैयार करने में शामिल किया गया। हर मांग पूरी करने के बजाय घर में बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए गए। और सबसे बड़ी बात, माँ ने सिर्फ बच्चे को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद भी अपनी आदतों में ध्यान दिया। तो श्रोता साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम की सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बार तेनू खवानू सोड़ो, बेशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी पुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपणो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते लेने हाजिर थी गया हूँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो बहन बोनो आज हमारी कार्यक्रम में आपते की बातचीत नो विषय है कि जैविक उर्वरक अपने हरते तैयार करने आनु हूँ महत्व है। तो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में हमारी आप तक घना कनी बात थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू करा इन पहले आप हम इन पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा अपनी बातें।

0: ભાઈ બનુ ગીતના આયુષ્ય પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ગણમાન સ્વાગત કર રહા હું અમારે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે ગીત કે પહેલા આપને વિષય બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હું કે ફસલ ઉત્પાદન મેં જૈવિક ઉર્વરકોનું શું મહત્વ હે એના બારામાં આજે વાત કરાંગા તો અણ વિષય માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણા કાર્યક્રમ થી જોડી રહી માંગીલાલજી તો સપ્તકી પહેલા આપણે સાંભળી લણની વાત મોરે કરા આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર જી
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: જી ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કે આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ ફસલ ઉત્પાદન મેં જૈવિક ઉર્વરકો કે મહત્વ કે લિયે તો સબસે પહેલે આપ હમે યહી બતાઈએ કે જૈવિક ઉર્વરક આખિર હૈ ક્યા ઓર ઇનકા ક્યા મહત્વ હૈ
1: જી તો દેખે બહુત અચ્છા વિષય હૈ કે જૈવિક ઉર્વરક કી જહાં બાત આતી હૈ તો ઉસકા સીધા સા મતલબ હોતા હૈ કે હમારા પરંપરાગત ખાદ જો કે હમારી ફસલ મિટ્ટી ખૂબ બહુ અચ્છે સે પોષણ દે ઓર ઉસકે સાથ મે હી જો હમારી જો પોષક તત્વ હૈ જો હમારે અનાજ ફલ સબ્જીઓ મે હૈ વો ભી પ્રચુર માત્રા મે હોતે હૈ
0: બિલકુલ
1: તો હમ ઉસકો ઇસ તરહ સમજતે હૈ કે અચ્છી ફસલ પ્રાપ્તિ કે લિયે યા મિટ્ટી કે સ્વાસ્થ્ય કે લિયે સિર્ફ પાણી હી પર્યાપ્ત નહીં હૈ બલ્કિ સ્વાસ્થ્ય ઓર ઉપજાઉ મિટ્ટી કે લિયે સબસે આવશ્યક હૈ વો હૈ હમારા પરંપરાગત જૈવિક ખાદ તો યે જો હૈ आप देखते हैं कि हम जैविक की जहाँ बात करते हैं तो सीधा सा है कि जो हमारे पशु होते हैं उनसे प्राप्त जो गोबर होता है इसके अलावा जो हमारे खेतों से जो हरा चारा जो अवशेष प्राप्त होते हैं इसके अलावा हमारे जो भी गाय भैंस को हम जो खिलाते हैं उसके अतिरिक्त जो बचता है उसको कहीं ना कहीं हम एक उकेड़ा में या कहीं डालकर उसको कंपोस्ट करते हैं और कंपोस्ट करते तो वो एक शुद्ध और जैविक खाद बनता है। उसी तरह से दूसरा जो है वो है केचुआ खाद जो हम लोग तैयार करते हैं बर्मी बेड में वो भी पूरा तरह से जैविक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जैसे गोमूत्र है और उसका हम नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र की हम बात करते हैं तो ये जो सारी चीजें हैं ये सीधा सा काम करती है जैविक खाद का।
0: बिल्कुल
1: तो इस तरह इसको हम समझ सकते हैं। दूसरा है कि जैसे इसमें गोबर खाद है कंपोस्ट है या बर्मी कंपोस्ट है हरी खाद है फसल के अवशेष है तो ये सब मिलकर ये जो शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद में जो खाद तैयार होता है वो जैविक खाद होता है।
0: बिल्कुल तो सर जैसा कि आपने बताया कि जैविक उर्वरक क्या है और किस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं मिट्टी को स्वस्थ रखने में इनकी क्या भूमिका है।
1: जैसे हम भूमिका की बात करते हैं तो जैविक खाद है मिट्टी को जैविक पदार्थ बढ़ाती है जो मिट्टी के अंदर में होते हैं। इसमें मिट्टी है जो भुरभुरी रहती है उसमें पानी जो सोखने की क्षमता है वो अधिक रहती है। दूसरा इसमें मिट्टी के अंदर जो हवा है वो अच्छे से पार होती है और बेहतर रहता है कि पौधों की जड़ें और जो उसका विकास है पौधों का वो बहुत अच्छी तरह से होता है।
0: बिल्कुल
1: इसके साथ जैविक पदार्थ जैसे जीव होते हैं सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में रहते हैं जो मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है वो बढ़ते हैं उनके माध्यम से वो क्या होता है कि वो पोषक तत्व जो है मिट्टी को देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपका जैविक खाद। कई प्रकार के जो है मिट्टी में जीव जो है वो उत्पन्न होते हैं जो कि आपकी मिट्टी के और आपकी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
0: बिल्कुल सर तो जैसा कि आपने बताया कि जैविक उर्वरकों का हम प्रयोग करते हैं तो इससे मिट्टी का स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहता है यही इसका फसल उत्पादन में क्या लाभ है।
1: देखिए जैसे हम जहाँ रासायनिक की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ एक रासायनिक जो खाद होता है वो एक जहर के बराबर होता है और उसका जो असर है वो उसके अनाज और फसल के जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी आता है।
0: बिल्कुल
1: तो उसी तरह हम देख सकते हैं कि जैविक की हम बात करते हैं परंपरागत खाद से जो उत्पादन की बात करते हैं तो फसल को सबसे पहले तो ये रहेगा कि जो आपका बीज होगा वो पूरी तरह से स्वच्छ रहेगा और वो उगेगा। दूसरा है कि उसका जो ग्रोथ है पौधों का वो बहुत ही अच्छी तरह की होगी और इसमें है कि फसल जो होगी जब पैदा होगी आपकी फसल उत्पादन होगा तो वो बहुत बेहतर तरीके से होगा।
0: बिल्कुल
1: इसके साथ में जो फसल होगी उसके अंदर जो हम बात करते हैं पोषक तत्व तो उनकी प्रचुर मात्रा में वो उसके अंदर होंगे।
0: बिल्कुल
1: तो ये जो सारी चीजें हैं इसके जो लाभ है वो सीधा सीधा पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पे कि जब हम अच्छा पकाया हुआ देसी खाद बीज से हम खाएंगे तो उसी तरह काम करेगा वो क्योंकि हमारी बॉडी को अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है और एनर्जी की होती है
0: जी जी
1: तो वो जो है वो बेहतर तरीके से होगी उन फसल में जो कि आपने जैविक खाद से की है।
0: बिल्कुल यही सर अब बात आती है पानी और नमी का प्रबंधन ये कैसे करता है।
1: देखिए जब जैविक खाद होता है तो आपकी जो मिट्टी है उसमें जैविक पदार्थ जो है वो बढ़ते हैं और मिट्टी जो सोख रोकने की जो क्षमताएं होती है पानी की, रोकने की या सोखने की जो नमी है वो लंबे समय तक बनाए रखती है। ऐसे खेतों में जैसे सिंचाई का पानी अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग हो सकता है, इसके वर्षा आधारित खेती है या वो क्षेत्र है जिसमें विशेष रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि जो आप उसके अंदर जो नमी है वो लंबे समय तक बनी रहती है। एक बार आपने अगर उसमें पानी दिया तो उसमें अपेक्षाकृत जो आप दूसरों खेतों में डालोगे उसकी तुलना में वहाँ कम पानी डालने की आवश्यकता होगी।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने बताया कि अगर हम जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो इससे पानी और नमी का प्रबंधन हम हमारी फसलों में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यही हमारे जो किसान भाई बहन है वो इसे कैसे अपना सकते हैं?
1: देखिए, हम लोग हमारे जो समुदाय में हैं कई सालों से हम इसको अपनाते आ रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और आज भी जो है कई परिवार अपना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ परिवार है जो आजकल रासायनिक तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हो या वो डाल रहे हो, तो ये इसका आसान तरीका है।
0: बिल्कुल,
1: इसका आसान तरीका है कि अगर आपके पास में 5-6 पशु है तो आप उनका गोबर जो है गड्ढे में आप डाल के और उसमें आप जो आपका जो चारा होता है हरा सूखा जो अवशेष होते हैं वो डाल के उसको आप कंपोस्ट करें और वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो मिक्स होके और जो है एक उकेड़ा है वो बन जाएगा आपका और उसका उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा है स्थानीय स्तर पर है, आप ईंटों से आप एक बर्मी बेड बना सकते हैं और उसमें जो है आप 30-40 दिन गोबर डाले, उसको थोड़ा ठंडा करें, ठंडा करने के बाद में जो है उसमें आप केचुए छोड़ दे।
0: बिल्कुल,
1: जो कि आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे आपके आसपास क्षेत्र से, तो इस तरह हम जो है उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि जो संसाधन है वो कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो पहले से हमारे पास है और हम अच्छी खाद तैयार कर सकते हैं, वो करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हमारे समुदाय में जो उकेड़ा है वो बहुत अच्छे से लोग कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उनका लाभ जो है सीधा सीधा अपनी फसल पे देखा गया है और देखा जा रहा है, तो उस तरह से आप आसानी से इनको तैयार करके और आपकी जमीन में इसका उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आप हमारे श्रोता साथियों को बता रहे हैं कि उन्हें इसका प्रयोग कैसे करना है और किस तरीके से इसके फायदे हमें हमारी फसल पर देखने को मिलते हैं और उत्पादन पर इसका कहीं ज्यादा महत्व हमें दिखता है, यही हमारे समुदाय साथियों की इसमें क्या भूमिका है?
1: देखिए, समुदाय स्तर पर जो हम बात करते हैं कि देसी खाद जो है जैसे आप उर्वरक की बात करते हैं तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। आप जो हमारे बड़े बुजुर्ग है उनके साथ बैठकर उन विषयों पर बात करनी चाहिए कि पहले कंपोस्ट कैसे तैयार होता था, उसके फायदे क्या है और उसकी सही प्रक्रिया क्या है, वो आपको वहां से हमारा जो परंपरागत ज्ञान है वहां से आपको प्राप्त होगी। इसके साथ ही किसान खेत में इसका प्रदर्शन करें, मतलब अगर आपने जैविक खाद डाला है तो समुदाय के लोग उसमें देखें कि जिसमें नहीं डाला और जिसमें डाला है दोनों में अंतर क्या है, उस अंतर को समझे, उनमें जो परिणाम है या फसल उत्पादन का है या बढ़वार का है या फसल की जो स्वच्छ फसल है उसका जो प्रभाव है उसका आकलन करें कि किस तरह से उसका प्रबंधन किया गया है। तो इसके साथ ही जो है किसान खेत पाठशाला की हम रेगुलर बात करते हैं नियमित समुदाय के साथ
0: जी,
1: तो उस दौरान भी जो है समुदाय के लोग अपनी बात को रखें और अपनी बात को कहते समय ये जरूर बताएं कि उसके जो गुण हैं उसके फायदे हैं वो किस तरह से आपको नजर आ रहे हैं, और जो व्यक्ति नहीं डाल रहा है उसके साथ इस विषय पर संवाद करने की आवश्यकता है ताकि समुदाय स्तर पर इस तरह की जो चीजें हैं उनको अपनाया जा सके और बेहतर स्वास्थ्य पोषण और उसको सुनिश्चित किया जा सके।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोता साथियों को दी है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगा कि जैविक उर्वरकों की हम बात करते हैं या हमारे परंपरागत खाद की बात करते हैं तो ये हमारी मिट्टी के लिए वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं कि

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
4: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा।
3: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण अनुकूल त्योहार को लेकर। अंजलि, जैसे कि त्योहार हमारे जीवन में खुशियां, उमंग और उत्साह के रंग भरते हैं, ये केवल पूजा पाठ या परंपराओं तक सीमित नहीं होते बल्कि परिवार और समाज को एक साथ जोड़ने का अवसर भी देते हैं। त्योहारों के माध्यम से हमारी संस्कृति और परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती है, लेकिन बदलते समय के साथ त्योहार मनाने के तरीकों में भी बदलाव आया है। हम देखते हैं कि आज जरूरत है कि हम अपनी खुशियों के साथ अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का भी ध्यान किस तरह से रखें।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण अनुकूल त्योहार को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, हमारे त्योहार तभी वास्तव में खुशियों के त्योहार बन सकते हैं जब उनके कारण किसी के स्वास्थ्य को नुकसान न पहुँचे और प्रकृति पर भी अनावश्यक बोझ न पड़े। इसलिए स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण अनुकूल त्योहार आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, त्योहारों के दौरान हम देखते हैं कि घरों की सफाई, सजावट, पकवान और मेहमानों का आना जाना बढ़ जाता है। श्रोता साथियों, इन सब के बीच हम कई बार अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। त्योहारों में तरह तरह की मिठाइयाँ, तले हुए खाद्य पदार्थ और अधिक मसालेदार भोजन की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि त्योहार की खुशी में भोजन की मात्रा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना भी जरूरी है। घर पर बने ताजे और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। फल, हरी सब्जियां, दालें, अनाज और पर्याप्त पानी हमारे भोजन का हिस्सा होना चाहिए। मिठाइयों और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित मात्रा में करना बेहतर है। बच्चों को भी श्रोता साथियों अधिक मीठे और पैकेज वाले खाद्य पदार्थों से बचने की आदत डालनी चाहिए। त्योहार खुशी बांटने का अवसर है, इसलिए मिठाई बांटने के साथ स्वास्थ्य की चिंता करना भी हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हम देखते हैं कि त्योहार से पहले घर और आसपास सफाई की जाती है, लेकिन सफाई केवल घर के अंदर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। गली मोहल्ले, सार्वजनिक स्थान और जल स्रोतों को भी साफ रखने होंगे। हम देखते हैं कि कूड़ा कचरा खुले में फेंकने से मच्छरों और अन्य कीट पनप सकते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए साथियों, त्योहारों के दौरान कचरे को निर्धारित स्थान पर डालना चाहिए और गीले तथा सूखे कचरे को अलग अलग रखने की आदत भी अपनानी होगी। हम देखते हैं कि साफ वातावरण स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी है। अगर हमारा घर साफ है लेकिन उसके आसपास गंदगी है तो हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हम कोई भी त्योहार मनाएं, हम पटाखे तो जलाते ही हैं। श्रोता साथियों, पटाखों का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ त्योहार जैसा कि हम सभी जानते हैं उसमें पटाखे चलाने की परंपरा है। पटाखे से निकलने वाला धुआं और शोर वातावरण को प्रभावित कर सकता है। इससे वायु की गुणवत्ता खराब होती है और तेज आवाज बच्चों और बुजुर्गों और पशु पक्षियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती
0: है। बिल्कुल।
1: इसलिए त्योहारों पर फटाकों के स्थान पर हमें कई अलग चीजों को काम में लेने की जरूरत है ताकि हम हमारे त्योहार को अच्छे से मना पाए। इसी के साथ हम जहाँ पे भी फटाके चला रहे हैं वहाँ के स्थानीय नियम और सुरक्षित तरीके की जो चीजें हैं उसका पालन करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी वजह से किसी और व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जागृति जी, त्योहार की खुशी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा आनंद किसी दूसरे के लिए परेशानी न बने।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ त्योहारों में सजावट का विशेष महत्व होता है। हम देखते हैं कि आज बाजार में प्लास्टिक, थर्मोकोल और कई सारी सजावटी वस्तुएं मिल रही है जिन्हें इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। इससे कचरे की मात्रा बढ़ती है और पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। इसकी बजाय हम मिट्टी के दिए, कपड़े की सजावट, कागज, फूल पत्तियां, लकड़ी और पुनः उपयोग की जा सकने वाली सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में पहले से मौजूद सजावटी सामान को दोबारा इस्तेमाल करना भी पर्यावरण संरक्षण का बहुत अच्छा तरीका है। श्रोताओं, प्राकृतिक सजावट न केवल सुंदर लगती है बल्कि हमारे त्योहारों को हमारी परंपराओं से भी जोड़ती है।
1: जी हाँ जागृति जी, त्योहारों के दौरान हम देखते हैं कि बाजारों में खरीदी बढ़ जाती है। सामान लेते समय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम करना चाहिए। कपड़े और जूट के थैले साथ लेकर बाजार जाना एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदत है। एक बार श्रोता साथियों, इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक प्लेट, गिलास और चम्मच की जगह हमें स्टील, कांच और अन्य उपयोग योग्य जो बर्तन होते हैं जागृति जी, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, कुछ त्योहार और धार्मिक आयोजनों में पानी का उपयोग और अधिक होता है। हमें समझना होगा कि पानी प्रकृति का अनमोल संसाधन है। त्योहार मनाते समय पानी की बर्बादी से बचना चाहिए। पूजा और सफाई के दौरान जरूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करना है। जल स्रोत में ऐसी सामग्री न डालें जिससे पानी प्रदूषित हो। नदियाँ, तालाब और कुएं की स्वच्छता हमें बनाए रखनी है। साथ ही हमारी जिम्मेदारी कि जल है तो जीवन है और स्वच्छ जल है तो स्वस्थ जीवन है।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण अनुकूल त्योहार हम मना सकते हैं, जिसमें हमने ढेर सारी बातों को जाना। यही बात करें मूर्ति विसर्जन और पर्यावरण की, तो श्रोता साथियों, त्योहार में मूर्ति विसर्जन हमारी आस्था और परंपरा का हिस्सा है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विसर्जन से जल स्रोत प्रदूषित न हो। प्राकृतिक मिट्टी से बनी मूर्तियों को प्राथमिकता देना और प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर विसर्जित करना पर्यावरण के लिए बेहतर कदम हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: फूल माला, प्लास्टिक कपड़ा और अन्य जो पूजा सामग्री है उसको जल में डालने के बजाय हमें उचित तरीके से अलग करना चाहिए। आस्था और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, सही तरीके अपनाकर हम दोनों का सम्मान कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हम भोजन की बर्बादी को किस तरह से रोक सकते हैं इसको लेकर बात करें तो त्योहारों में घरों और सामुदायिक कार्यक्रमों में बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है। कई बार जरूरत से अधिक भोजन बनने के कारण वो बर्बाद हो जाता है। इसीलिए भोजन बनाते समय श्रोताओं परिवार की आवश्यकता का अनुमान लगाना होगा। अगर भोजन बच जाए तो उसे सुरक्षित तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा। एक तरफ जब बहुत से लोग भोजन की कमी का सामना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भोजन की बर्बादी करना उचित नहीं है। भोजन का सम्मान करना भी सामाजिक जिम्मेदारी है। साथ ही बच्चे हमारे समाज का भविष्य है, त्योहार उनके लिए सीखने का भी अवसर है। हम देखते हैं अंजलि कि माता पिता और शिक्षक बच्चों को समझा सकते हैं कि त्योहार केवल नए कपड़े पहनने और मिठाई खाने का नाम नहीं है, बल्कि बच्चों को पौधे लगाने, कचरा अलग करने, पानी बचाने, पशु पक्षियों का ध्यान रखने और स्वच्छता बनाए रखने जैसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। अगर बचपन से ही श्रोताओं बच्चों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित होगी तो भविष्य में भी पर्यावरण के जिम्मेदार नागरिक हम बन सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, त्योहारों की तेज आवाज और आतिशबाजी से पशु पक्षी घबरा सकते हैं, इसलिए श्रोता साथियों, त्योहार मनाते समय उनके प्रति संवेदनशीलता रखना जरूरी है। गर्मी या अन्य मौसम के अनुसार घर के बाहर पक्षियों के लिए पानी रखना, जरूरतमंद पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करना और उन्हें परेशान न करना भी हमारी जिम्मेदारी है। प्रकृति केवल पेड़ पौधे का नाम नहीं है, इसमें पशु पक्षी और सभी जीव शामिल होते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि त्योहारों में देर रात तक जागना, भोजन के समय में बदलाव और शारीरिक गतिविधियां कम होना भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए त्योहारों के बीच में पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित शारीरिक गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए। त्योहार की व्यस्तता में यदि हम अपने शरीर और मन को थोड़ा आराम देंगे तो त्योहारों का आनंद और भी बेहतर तरीके से ले पाएंगे।
1: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि पर्यावरण अनुकूल त्योहार का एक और महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देना है। मिट्टी के दिए, स्थानीय हस्तशिल्प, हाथ से बनी सजावटी वस्तुएं और स्थानीय उत्पाद खरीदने से स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यवसायों को भी सहयोग मिलता है। जब हम स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं तो एक तरफ अपनी संस्कृति और कला को बढ़ावा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने आसपास के लोगों की आजीविका में भी हम योगदान देते हैं। हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है श्रोताओं, इसमें हर व्यक्ति की भूमिका है। विद्यालय हो, परिवार हो, पंचायत, बाजार, सामाजिक संस्थाएं और स्थानीय समुदाय मिलकर पर्यावरण अनुकूल त्योहारों की दिशा में काम कर सकते हैं। गाँव में ग्राम सभा के माध्यम से भी लोगों को स्वच्छता, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: सामुदायिक रेडियो भी इस जागरूकता को घर घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब पूरा समुदाय मिलकर एक संकल्प लेता है तो छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव में बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज हमें त्योहारों को केवल परंपरा के रूप में नहीं बल्कि जिम्मेदारी के अवसर के रूप में देखना होगा।
1: बिल्कुल।
0: ऐसा त्योहार जिसमें घर रोशन हो लेकिन सड़क पर कचरा न फैले, पूजा हो लेकिन जल प्रदूषित न हो, मिठाई बने लेकिन भोजन बर्बाद न हो, खुशी मनाई जाए लेकिन किसी के स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे, यही हमारे त्योहारों की सुंदर तस्वीर हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति हमारी जरूरतें पूरी करती है लेकिन हमारी लापरवाही का बोझ अनंत समय तक नहीं उठा सकती।
1: बिल्कुल।
0: त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है और पर्यावरण हमारा जीवन का आधार, इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाना ही हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जागृति जी, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ वातावरण और खुशहाल समाज, यही त्योहारों की वास्तविक खुशी है। इसलिए इस त्योहार को मनाते हुए हम एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, पानी बचाएंगे, प्लास्टिक कम करेंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे, पशु पक्षियों का ध्यान रखेंगे और प्रकृति के साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे। क्योंकि जब हमारी खुशियों में प्रकृति की मुस्कान शामिल होगी तभी त्योहार सच में त्योहार बनेंगे।
1: बिल्कुल।
0: दिए जले तो रोशनी घर तक पहुँचे, खुशियाँ बटे तो हर दिल तक पहुँचे, त्योहार मनाए तो ऐसे मनाएं हम कि जहां स्वास्थ्य भी बचे और प्रकृति भी सजी हुई रहे।
1: बिल्कुल अंजलि, यही जागरूकता है और यही जिम्मेदारी है और यही सच्चे स्वराज की दिशा में हमारा एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: बिल्कुल,
1: इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं श्रोता साथियों, क्योंकि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बातें रही स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण अनुकूल त्योहार को लेकर, ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है जंगल से जुड़ा आदिवासी पारंपरिक ज्ञान, जिसके स्वास्थ्य लाभ क्या है और किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे हमारी संस्कृति जो है वो हमें प्रकृति और स्वास्थ्य तीनों से जोड़ती है। आदिवासी समाज जो है वो सदियों से जंगल के साथ मिलकर जीवन जिताया है।
0: बिल्कुल,
1: उनके लिए जंगल मनीषा केवल लकड़ी, फल या ईंधन का स्रोत नहीं है बल्कि एक जीवन साथी है। जंगल उन्हें भोजन देता है, औषधियां देता है, स्वच्छ हवा देता है और स्वस्थ जीवन जीने की सीख भी देता है। आधुनिक विज्ञान आज जिन बातों पर शोध कर रहा है उनमें से कई बातें आदिवासी समुदाय वर्षों से अपने अनुभव के आधार पर अपनाते आए हैं। तो आज हम जानेंगे जंगल से जुड़ा यह पारंपरिक ज्ञान हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम की शुरुआत में हम गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विशेष रीति रूबरू कराई चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं जंगल से जुड़ा आदिवासी पारंपरिक ज्ञान हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभकारी हो सकता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि आदिवासी समाज का जीवन जंगल से शुरू होकर जंगल पर निर्भर करता है। उनका भोजन, आवास, वस्त्र, औषधि, पशुपालन, आजीविका का मुख्य साधन है वो जंगल है। वे जंगल से उतना ही लेते हैं श्रोता साथियों जितनी आवश्यकता उन्हें होती है, और बदले में वे जंगल की रक्षा करते हैं। श्रोता साथियों, यह सोच स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वस्थ जंगल ही स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और औषधीय पौधों का स्रोत है। यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे अंजलि जी, तभी हम देखते हैं कि मानव जीवन है वो सुरक्षित रहेगा।
1: जी हाँ, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि आदिवासी समाज का जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। वे मौसम के अनुसार भोजन बदलते हैं, स्थानीय फल फूल और कंदमूल खाते हैं, प्राकृतिक जल स्रोतों का उपयोग करते हैं और शारीरिक श्रम को जीवन का हिस्सा मानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसी कारण मनीषा उनके जीवन में प्रकृति और स्वास्थ्य का संतुलन बना रहता है। वे जानते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए दवा से पहले सही भोजन, स्वच्छ वातावरण और संतुलित जीवन शैली जरूरी है। जंगल अनेक प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ का खजाना है। महुआ के फूल, तेंदू, जामुन, बेर, आंवला, बेल, सीताफल, इमली, शहद, बांस की कोपले, अलग अलग प्रकार की पत्तेदार सब्जियां और कंदमूल शरीर को आवश्यक पोषक प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ये खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जिससे शरीर मजबूत बनता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आदिवासी समुदाय विभिन्न औषधियों की पहचान और उनके उपयोग में अत्यधिक दक्ष होते हैं। वे मौसम, पौधों की आयु, पत्तियां, जड़ी और छाल और उनके गुणों से अच्छी तरह से परिचित होते हैं। उनके अनुसार किसी भी जड़ी बूटी का सही समय पर संग्रहण, उचित मात्रा में उपयोग ही प्रभाव को बढ़ाता है। यह ज्ञान श्रोता साथियों पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ता रहता है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि आदिवासी समाज सामान्य बीमारियों का उपचार जंगल से मिलने वाली जड़ी बूटियों से ही करते हैं। बुखार के लिए कुछ विशेष पौधों की पत्तियों का काढ़ा वे बनाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि सर्दी खांसी में तुलसी, अदरक, काली मिर्च वनस्पतियों का उपयोग वे करते हैं। घाव भरने के लिए श्रोता साथियों औषधीय पत्तियों का लेप वे बनाते हैं। पेट दर्द में श्रोता साथियों कड़वी जड़ों या प्राकृतिक बीजों का उपयोग वे करते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि त्वचा के रोगों में नीम, करंज या अन्य औषधीय पौधों का वे उपयोग करते हैं। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि इन उपचारों में प्राकृतिक तत्वों का उपयोग होने से कई बार दुष्प्रभाव कम देखने को मिलते हैं, लेकिन श्रोता साथियों गंभीर बीमारी से परीक्षित होने पर हमें डॉक्टर से सलाह लेकर उनके अनुसार हमें अपने स्वास्थ्य की जाँच करवानी है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही कहना चाहेंगे कि आदिवासी समुदाय अनेक औषधीय पौधों की पहचान रखते हैं।
0: जी हाँ,
1: गिलोय, नीम, तुलसी, अर्जुन, हरड़, बहेड़ा, आंवला, अश्वगंधा, कालमेघ, अन्य जड़ी बूटियों का उपयोग बुखार, सर्दी खांसी, पेट दर्द, घाव, त्वचा संबंधित समस्याओं में करते आए हैं। श्रोता साथियों, आदिवासी समाज हर मौसम के अनुसार खान पान बदलता है। गर्मी में ठंडक देने वाले फल और पेय, वर्षा ऋतु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ और सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले अनाज और बीजों का सेवन किया जाता है। इससे शरीर मौसम के बदलाव के अनुसार स्वयं को बेहतर ढंग से तैयार कर लेते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जंगल से लकड़ी लाना, खेती करना, पैदल चलना, पशुपालन और अन्य दैनिक कार्य आदिवासी जीवन का हिस्सा है।
0: जी हाँ,
1: इसमें अलग से जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका पूरा दिन सक्रिय रहता है। यही कारण है कि नियमित शारीरिक गतिविधि उनके स्वास्थ्य का मजबूत आधार बनती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से जंगल से जुड़ा आदिवासी पारंपरिक ज्ञान को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं, और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही आपको कहना चाहेंगे कि जंगल का स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा और हरियाली मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक होती है। प्रकृति के बीच रहने से श्रोता साथियों मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आदिवासी भोजन में मोटे अनाज, स्थानीय दालें, मौसमी सब्जियां और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ अधिक होते हैं। कम तेल, कम मसाले और ताजा भोजन पाचन को बेहतर

0: पेड़ों की अनावश्यक कटाई साथ ही आग से बचाने में विशेष ध्यान रखते हैं।
1: जी जी।
0: इससे पर्यावरण संतुलित रहता है और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। साथ ही श्रोता साथियों, प्राकृतिक वातावरण मन को शांति देता है। आदिवासी समाज में संगीत, लोक नृत्य, सामूहिक जीवन, त्योहार और प्रकृति के साथ समय बिताने की परंपरा है, वो हमारे तनाव को कम करने में मदद करती है। आज वैज्ञानिक भी श्रोता साथियों यह मानते हैं कि हरियाली और प्रकृति मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती है।
1: जी हाँ मनीषा, यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो औषधीय पौधे, स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और पौष्टिक भोजन भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जंगल बचाना केवल पर्यावरण बचाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है।
0: जी हाँ।
1: स्थानीय और मौसमी भोजन को हमें अपनाना है। इसी के साथ हमें नियमित शारीरिक श्रम करना है, जंगलों और जैव विविधता की रक्षा करनी है, पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करना है और इसी के साथ बुजुर्गों से स्थानीय औषधीय और खाद्य पदार्थों की जानकारी हमें लेनी है।
0: जी बिल्कुल।
1: प्रकृति हमें हर दिन यह सिखाती है श्रोता साथियों कि स्वस्थ जीवन के लिए संतुलन जरूरी है। आदिवासी समाज का पारंपरिक ज्ञान हमें बताता है कि यदि हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज तीनों मजबूत होगा।
0: जी हाँ।
1: आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक अनुभव एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि यही समझ के साथ एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। इसलिए किसी भी समाज की सबसे बड़ी संपत्ति केवल उसकी इमारतें या तकनीक नहीं होती बल्कि उनका अनुभव और जीवन जीने की समझ होती है।
0: जी हाँ।
1: आदिवासी समुदाय श्रोता साथियों, जंगलों के बीच रहते हुए ये साबित करते हैं कि स्वास्थ्य केवल अस्पतालों और दवाइयों से नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित संबंध, पौष्टिक भोजन और सामूहिक जीवन और नियमित श्रम और पर्यावरण के सम्मान से मिलता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस अमूल्य पारंपरिक ज्ञान को केवल अतीत की विरासत न माने बल्कि वर्तमान भविष्य की आवश्यकता के रूप में देखें।
0: जी
1: जब हम जंगलों की रक्षा करते हैं, स्थानीय खाद्य पदार्थों को अपनाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हैं और आदिवासी समुदाय के अनुभवों को सीखेंगे, तब हम केवल अपनी सेहत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित, स्वस्थ और संतुलित जीवन की नींव रखेंगे। प्रकृति के साथ जुड़ाव ही मनीषा स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आज की पीढ़ी आदिवासी जीवन से कई महत्वपूर्ण बातें सीख सकती है। प्राकृतिक भोजन को अपनाना, पर्यावरण की रक्षा करना, नियमित शारीरिक श्रम को अपनाना, साथ ही स्वच्छता बनाए रखना, पेड़ों का सम्मान करना और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जंगल से जुड़ा आदिवासी पारंपरिक ज्ञान केवल इतिहास ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की एक जीवंत प्रेरणा भी है।
1: बिल्कुल।
0: यह हमें सिखाता है कि एक अच्छा स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बल्कि प्रकृति, संतुलित भोजन, नियमित श्रम, स्वच्छ पर्यावरण और सामुदायिक सहयोग से प्राप्त होता है। यदि हम इस ज्ञान का सम्मान करते हुए श्रोता साथियों जंगलों का संरक्षण करें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जिए, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि हम स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य छोड़कर जाएंगे।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने श्रोता साथियों को ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में जो बातचीत रही, जो गीत संगीत रहे, वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे है जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने कने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो दोनों अरे सब समस्या नो समाधान आपे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आयत की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मिलने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लगाड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरो अपनावी जानकारी सबनो हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लगाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खां मोमिन की गजल है जिसका मतलब है रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।